0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: नमस्कार विदिता, सभी को मेरा नमस्कार। राधा मुर्शिद में आज सुबह 10 बजे से 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। कल जुमेरात शाम 4 बजे तक ये हालत बरकरार रहेगी। इसके अलावा मस्केरिंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुर्शिद में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। समुंदर की मौजों से साहिली इलाकों में बाढ़ के खतरे भी हैं। मुर्शिद की तरफ इतिहाद एयरवेज की उड़ानें भरने के लिए बातचीत की जा रही हैं। काफ़ी वक्त से अबूधाबी की सरकार ने मुर्शिद में ये विमानन सेवा देने का इरादा जाहिर किया। इस नई हवाई कनेक्टिविटी के ज़रिए हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदे होंगे। मुर्शिद में जुलाई 2026 तक मेथाडोन लेने वाले लोगों की तादाद 8,118 रही। मुल्क भर में 70 जगहों पर इन्हें प्रदान किया जाता है। ड्रगनोशी के इलाज के तौर पर मेथाडोन प्रदान करने का सरकार का मकसद ड्रग्स के आदि लोगों को दोबारा समाज में मौका देना है। इस प्रोग्राम की कारगरता के साथ साथ बहुत सी चुनौतियाँ उभरती हैं, साथ में पारिवारिक भूमिका बहुत ज़रूरी है। आज फौदा लावाल के मकबरे तक तीर्थ यात्रा की जाएगी। गरीबों के मसीहा के रूप में मुर्शिद पधारे जाक डेज़िरे लावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश के चार कोनों से लोग सैंत ख्वा जाएंगे। पेशे से डॉक्टर, 1841 में फौदा लावाल मुर्शिद पहुंचे थे। उन्होंने हमेशा तंगदस्तों के लिए काम किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें 1979 में आशीर्वाद दिया था। आज सैंत ख्वा में खास मास सभा का आयोजन किया जाएगा। विदेश में दिल्ली में दक्षिण पश्चिम स्थित सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढह गई है। पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिससे हादसे की प्रारंभिक वजह समझी जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: मुर्शिद में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी आज सुबह 10 बजे से कल शाम 4 बजे तक जारी। इसके अलावा मस्केरिंस के दक्षिण पश्चिम से ठंड की लहर हमारे इलाके के नज़दीक बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुर्शिद में तेज़ हवाएं चलेंगी और ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए मुर्शिद के मौसम का अनुमान है। आज सुबह घने बादल होंगे, दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होने लगेगी। कुछ जगहों में तेज़ वर्षा हो सकती है। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, जो कभी कभार ज़ोरदार होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। और लगुनों के उस पार समुंदर बहुत ही ख़राब होने वाला है। 4 से 6 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसकी वजह से साहिली इलाकों में बाढ़ के उतरने का ख़तरा भी है। इसी वजह से सभी तरह की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही हैं। मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से मांग की जाती है कि वे दूर समुंदर में न जाएं, और सड़कों पर भी लोगों से सावधान रहने की मांग की जा रही है, क्योंकि बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। तापमान की बात करें तो तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, और न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो में 15 से 17, अधिकतम 19 से 22, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:13 पर और आज शाम को 6:02 पर सूरज ढल जाएगा।

वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह असर की तिलावत नमाज में पसंद करता हो, ए अल्लाह तू उसके चेहरे को मुनव्वर फरमाना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप और हम मुलाकात करते हैं, घंटों बैठते हैं, बैठकर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का भी आपस में मिलने मिलाने का माहौल था, मामूल था, लेकिन वो सिर्फ मिलते मिलाते नहीं थे, उनका मिलना भी अल्लाह के लिए होता और जुदा होना भी अल्लाह ही के लिए होता। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में गुजरता। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के मामूलात में से चंद मामूलात जो मुलाकात के वक्त के थे, उसमें से एक ये भी था कि जब सहाबा आपस में मिलते तो एक दूसरे को सलाम करते, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करते, और जब सहाबा एक दूसरे से जुदा होते तो जुदा होने वालों में से कोई सहाबी दूसरे सहाबी को सूरह असर की तिलावत करके सुना दिया करते। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरह असर के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी शख्स के पास मसरूफियत की वजह से इतना वक्त नहीं है कि वो पूरे कुरान मुकद्दस के मानी और मतालिब को समझ सके, तो बस वो सूरह असर को समझ ले कि उसका समझ लेना भी उसके लिए काफी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर इस छोटी सी सूरत में वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा राज है, वो कौन सी मानवीयत है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इस सूरत की तिलावत करने वाले के चेहरे के मुनव्वर होने की दुआ फरमाएं, सहाबा एक दूसरे से जुदा हो तो ये सूरत एक दूसरे को सुनाएं, और हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सूरत को मानवीय एतबार से मसरूफियत की बुनियाद पर पूरे कुरान को कोई न समझ सकता हो, इतना वक्त नहीं है तो इस सूरह मुबारका के मानी और मतालिब को समझ लेना काफी फरमाते हो, तो आइए हम सूरह असर के कुछ मानी और मतालिब की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करें, और उसके बाद मौजूदा दौर में जहां पर हम खड़े हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, और जिस कसम कुर्सी के अय्याम हम गुजार रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा जिस जवाल की शिकार है, इस जवाल से निकलने का तरीका क्या है, हम उसके हवाले से भी गौर करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वल असर, जमाने की कसम। असर के मानी होता है निचोड़ के, और यही वजह है कि अरबी में असीर ये जूस को कहते हैं, फलों का वो निचोड़ होता है। बाद मुफस्सरीन इस तरफ गए कि ये जो कसम याद फरमाई गई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जो कसम कुरान मुकद्दस में असर कहकर के याद फरमाई, इससे मुराद वक्त असर है। बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद मुतलक जमाना है, लेकिन इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजाखा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुल वरिज़वान, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा याद रसूल में, जिक्र रसूल में गुजरता, वो जब इस छोटी सी सूरत और छोटी सी आयत का जब तर्जमा करते हैं तो फरमाते हैं, जमाने महबूब की कसम। मुतलक जमाना नहीं फरमाया, जमाने को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत देकर तर्जमा करते हैं, जमाने महबूब की कसम, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों की तवज्जो को मबजूल कराना, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों के राब्ते को मजबूत करना, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने का हौसला पैदा करना, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर एक एक साहब को गुजारने की तालीम देना, ये इमाम इश्को मोहब्बत का मिशन था। अगर मैं ये कहूं तो बेजा ना होगा कि वो मुबल्लिगे इश्के रसूल थे, का एक एक लम्हा इश्क रसूल की दावत में गुजरता, मोहब्बत रसूल की दावत में गुजरता। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने वल असर का तर्जमा फरमाया, जमाने महबूब की कसम, और उसके बाद खुद
जब रसूल आजम की बारगाह के अंदर अशार की शक्ल में हदीये नात पेश करते हैं तो कहते हैं।

हुए, निकाह का इरादा रखते थे, मेहर देने के लिए उनके पास कुछ भी रकम मौजूद नहीं थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने फक्र फाके और गुर्बत और इफलास की बात अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर निकाह करना तो चाहता हूं लेकिन मेहर अदा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सरकार सवालात पर सवालात पूछ रहे हैं और किसी भी चीज के होने का उन्होंने इनकार किया तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कुछ कुरान की आयतें तो याद होंगी। अर्ज करते हैं, हां सरकार। कहा, तुम्हारी बीवी का महर यही है कि तुम उसको चंद आयतें कुरान की याद करा दो, यही उसका महर हो जाएगा। इस तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंकलाब पैदा फरमाया। तो समाने महबूब की कसम, इल्म इनकलाब की कसम, जो सरकार ने इल्म इनकलाब पैदा फरमाया, इल्म इनकलाब था और अखलाक इनकलाब। अब कुरान का अंदाज देखिए, जमाने की कसम, इंसान की कसम नहीं, अफराद की कसम नहीं, जमाने की कसम। जमाना बतौर गवाह मौजूद है। हालात देखें, इंसान 70 साल 80 साल 100 साल जी करके मर जाता है लेकिन उसकी पैदाइश से लेकर के मौत तक की उसकी जिंदगी के हवाले से जमाना गवाही देता है। ये मकान इसका था, ये यहां रहता था, इसने इस तरीके से किया, ये जमाने की सारी चीजें उसके हवाले से गवाही देती हैं। जमाने की कसम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और फिर नब्जे इंसानी पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस तरह से जर्ब लगाई और इंसान को चौंका दिया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान काटे में है, खसारे में है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो खसारे को पसंद करता हो, हर कोई फायदा ही पसंद करता है। घाटे की बात कही जाए तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, घाटे का तस्करा कर दो चेहरा फक पड़ जाता है। आप अंदाजा लगाएं, अगर आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदने के बाद आप जब फरोख्त करने के लिए निकले और मार्केट के अंदर उसकी डिवेल्यूशन की वजह से उसकी वैल्यू जिस कीमत पर आपने खरीदी थी उससे उसकी वैल्यू गिर गई, तो आपको जब कहा जाएगा कि इसकी कीमत अब इतनी नहीं आएगी, भाई वैल्यू डाउन हो चुकी है, आपको 50,000 का खसारा होगा, चेहरे का रंग उड़ जाएगा। खसारा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवाल यह पैदा होता है कि रब ने जो फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, कौन सा घाटा? बजाहिर तो इंसान फायदे ही में नजर आता है कि पैदा हुआ था तो उसके जिस्म पर लिबास भी नहीं, लेकिन पैदा होने के बाद उसे लिबास भी मिला, मां का प्यार भी मिला, मकान भी मिला, गिजा भी मिली, तो ये तो नुकसान में नजर नहीं आ रहा है। बजाही तो इंसान फायदे में नजर आ रहा है लेकिन कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुसर। अच्छी तरीके से याद रखो, घाटा उसको कहते हैं कि असल पूंजी में जब कमी वाकई हो जाए उसे कहते हैं घाटा। असल पूंजी में जो मूड़ी हो उसमें कमी वाकई हो जाए उसे कहते हैं घाटा। अब कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंसान की असल पूंजी क्या है? जब असल पूंजी समझोगे तो घाटा समझ में आएगा। अगर आज किसी के सामने ये कहा जाए फला साहब खसारे में चल रहे हैं तो आदमी का जहन फौरन इस तरफ जाएगा कि शायद माल में नुकसानी हो गई, प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, किसी ने धोखा दे दिया इसलिए खसारे में। लफ्ज़ खसारा, लॉस, घाटा, ये लफ्ज़ ज़बान पर आते ही इंसान ये समझता है कि माली एतबार से उसे खसारा हुआ है। मैं आज आपको असल पूंजी बता दूं और फिर कुरान ने जिस घाटे के बारे में कहा है उस घाटे को आपके सामने पेश कर दूं और फिर कुरान को आईना बनाकर अपनी जिंदगी को हम देखने की कोशिश करें कि हम घाटे में हैं, नुकसान में हैं या फायदे में। असल पूंजी क्या है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। असल पूंजी तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? नंबर एक उम्र, लाइफ, एज,

0: नंबर दो सेहत, समझ रहे हैं ना आप, तंदुरुस्ती समझ रहे हैं ना, हेल्थ, लाइफ, एज और हेल्थ, ये तीन चीजें इंसान की क्या है, टाइम, लाइफ और हेल्थ, ये तीन चीजें इंसान की पूंजी है।
1: सामीन अभी आप सूरह अल असर की तफसीर बयान का पहला हिस्सा समाप्त कर रहे थे, इंशाल्लाह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा अगले हफ्ते हम आपको गोश गुजार कराएंगे।

हदीस मुबारका में है कि क़यामत के दिन जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे जन्नत की नियामतों से खुश हो रहे होंगे, लेकिन एक तड़प उनके दिल में होगी कि काश वो लम्हात जो हमने अल्लाह सुबहान व तआला की याद में न गुजारे वो भी अल्लाह की याद में गुजारे होते तो आज हमें जन्नत में और आला मकाम मिल जाता।

प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे का एक संदूक होगा, जो वक्त अल्लाह अज़्ज़ वजल की याद में गुजरा होगा वो तो नूर के भरे होंगे, और जो वक्त गुनाहों में गुजरा होगा वो आग के भरे होंगे, और जो फारिग रहकर गुजारे होंगे वो खाली होंगे। अब हमें गौर करना चाहिए, हम रोज़ाना कितने संदूक आग के, कितने नूर के और कितने खाली रखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारते थे, हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करते थे। अगर गौर किया जाए तो ये इंसान के किस कदर मेराज है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमा रहा है, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, तू मेरी याद कर, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, और मेरा हक मानो और मेरी ना शुक्री ना करो। क्यों?

0: நாளைதோறும்
1: 7 மணி முதல் 8 மணி வரை.
0: இறுதியாக வரும் பாடலி.

0: लहानच राहती.
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

संगीत प्रेमी श्रोतानों या सुरेल में फिलित प्रतीक गीत मंजी भावना एक नवा रंग चला पुटचा रंग अनुभव करू या जवेदली व सुनानी सुनावनी यांच्या सुमधुर आवाजात

0: एमपीसी तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

मंगलवार 8 सितंबर दिन के 10:45 हो चुके हैं। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस भक्ति गीतों के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रोताओं, भक्ति गीतों का ये जो कार्यक्रम है चलेगा दिन के 11:30 तक, भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम। और ईश्वर के प्रति भक्ति जो है कहीं ना कहीं हमें ईश्वर के और भी समीप ले जाती है। हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं, अपने हर एक भावनाओं को ईश्वर के प्रति व्यक्त कर पाते हैं। और कहते हैं ना कि कभी कभार हमेशा जो है हमें ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ईश्वर से सदैव जो है हमें याचनाएं नहीं करनी चाहिए। कभी कभार ये जो सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन के हर एक क्षण को हम जी पा रहे हैं, जीवन में अलग अलग अनुभवों को हम कर पा रहे हैं, इसके लिए एक कृतज्ञ हृदय रखते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि ईश्वर जो है हमारे जीवनदाता है, परमपिता परमेश्वर है। ये जीवन उन्होंने हमें दिया है तो अवश्य कुछ ना कुछ सोच कर ही दिया होगा। आज अगर कहीं किसी कारणवश किसी संघर्ष का सामना हम कर रहे हैं तो ईश्वर जो है उस संघर्ष से जो है निपटने के लिए, उस संघर्ष का सामना करने के लिए शक्ति भी हमें प्रदान करते हैं। तो उस ईश्वर पर विश्वास हमेशा होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ भगवान गणेश का नाम लेते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ हम करते हैं।

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, भक्ति की बात करें तो अभी तो इतने पावन पर्व हम मना रहे हैं, ये भक्ति जो है अपने चरम पर है। अभी कुछ दिनों पहले हमने कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया और अगले सप्ताह गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व मनाने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में सभी भक्त जो है बड़े हर्ष उल्लास एवं भक्ति भाव के साथ लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी जब अपने पर्वों को इतने उत्साह के साथ मनाती है, इतने भक्ति भाव के साथ मनाती है, तो कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि होती है कि हमारा जो आने वाला कल है वो अच्छे हाथों में है। क्योंकि जो भी ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर की कृपा को अवश्य प्राप्त करता है। अभी के लिए चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम बजरंग बली की कृपा को प्राप्त करते हैं। मंगलवार का दिन है तो यहाँ पर इस अगले भक्ति गीत के साथ हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं।

कहीं ना कहीं श्रोताओं इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से आचना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, मन में यही आशा लिए, मन में यही प्रार्थना लिए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, ईश्वर हमारा सदैव ध्यान रखेंगे, ईश्वर जो है हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और ईश्वर अपने भक्तों का साथ सदा ही देते हैं। कहीं ना कहीं यह हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चले, ईश्वर के दिखाए हुए जो भी नियम है उनका पालन करें, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो कहीं ना कहीं अपनी करुणा की भावना का होना बहुत आवश्यक होता है हमारे जीवन में, एक दूसरे के प्रति समझ होना आवश्यक होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे भीतर करुणा, प्रेम, ये सारी भावनाएँ नहीं हैं तो इस मानव जीवन को व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ईश्वर जो है हमें शक्ति प्रदान करते हैं जीवन के इन सभी मूल्यों को समझने के लिए, और जीवन को हम अच्छे से व्यापन कर पाए इसके लिए भी हमारा साथ देते हैं।

0: शक्ति।
1: श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के लगभग अंत तक हम आ पहुंचे हैं और इस अंतिम आरती के साथ जो है भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपने इतने प्रेम से हमारा साथ दिया, इसके लिए आभार। 11:30 बजे आप चाइनीज भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन की प्रस्तुति में, और हमारी आपकी भेंट दोबारा होगी 12:00 बजे से सुहाना सफर इस प्रोग्राम में। तो साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 94.96 98.2। आप सुन रहे हैं ORM 3। सुनते संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। रूनियन में 155 किलो गांजे की जब्ती के सिलसिले में रविंद्र शीमा जी और गुलशन गोविंद को शक्की नेटवर्क के अहम किरदारों की हैसियत से पहचाना गया है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं ने आजसू के साथ मिलकर जांच की कल पश्चिम में और छापे मारे गए। लैगोलैथ में रविंद्र शीमा जी के यहां ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी दो कश्तियों को जब्त किया गया। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के बेटे योविसन गोविंद से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई, उसे वापस घर जाने की इजाजत दी गई। अगर आप समुद्र जा रहे हैं या साहिली इलाकों में हैं तो ज़रा सावधानी बरतें, क्योंकि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। इलाके में ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन की मौजूदगी से ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। बारिश होती रहेगी जो कभी कभार ज़ोरदार होगी। फौतलावाल की बरसी के मौके पर परंपरानुसार आज तीर्थ यात्रा की जाएगी। मुल्क के दीगर इलाकों से लोग पैदल जाकर सैन ख्वा में उनके मकबरे पर फूल चढ़ाकर विशेष प्रार्थनाएं करेंगे और उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। आज रात 8 बजे खास मास सभा का आयोजन भी किया जाएगा। नेशनल टास्क फोर्स के सतह पर सभी तैयारियाँ की जा चुकी हैं। इजिप्ट में टेलीविजन पेशकार साला खरीफा को मौत की सजा दी गई है। एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने के जुर्म में काहिरा की अदालत ने यह सजा दी। पेशकार खलीफा 39 साल की थी और मिशन इम्पॉसिबल नामी प्रोग्राम में जुर्म के खिलाफ आगाही पैदा करने में बहुत मशहूर थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। फोबाक रोड फोजिसाक में 60 साल की 60 years old श्रीमती निवेदा बीफोयान, श्रीमती निवेदा बीफोयान पैदाशी नाम सिराज जो मैडम सुरेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 2 बजे इनके पति संजय बीफोयान के घर फोबाक रोड फोजिसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मिशन क्रॉस रोड ग्रां बाफू ललमाची में 82 साल के 82 years old श्री रामावाद बंधु जो राजलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2 बजे इनकी पत्नी देविका बंधु के घर मिशन क्रॉस रोड गाँव बाफो लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कोलोनेल मैगो स्ट्रीट बबासे में 68 साल के 68 years old श्री देवानंद हरकू जो आनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 3 बजे इनके घर कुल

0: नेल मैगो स्ट्रीट बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लुव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 पीएम। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio. Man.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। तो चलिए, दिस इज योर सुहाना सफर। आज है मंगलवार, 8 सितंबर। आप सभी का वेलकम है, मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ देने के लिए आ चुके हैं हम अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। तो तैयार हो जाइए इस सुरीले म्यूजिकल सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पुराने गाने अगर सुनना चाहते हैं तो बेशक दिस इज़ द परफेक्ट प्रोग्राम, जुड़ जाइए हमारे साथ विथ योर डेडिकेशन, विथ योर फरमाइश 4028070 पर। यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव हम आएंगे, तो वहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। ऐसे आज की तारीख बहुत खास है, आज है 8 सितंबर। आज आशा भोसले जी की जन्मतिथि है। आज ऐसे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक कलाकार जो है वो चला जाता है, लेकिन उनकी कला हमेशा साथ रहती है। तो चलिए आशा जी को याद करते हुए इस गाने की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल फिल्म का ये तराना है आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। तो कोई गाना आप भी अगर आशा जी का डेडिकेट करना चाहते हैं तो बेशक आप हमारा साथ दीजिए इन सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडीड दोपहर का जो समय होता है, बहुत से लोग लंच करते करते हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर चाहे घर से साथ दे रहे, अगर काम पर भी है तो इस समय ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, तो ऐसे में आपको मौका मिल रहा है हमारे साथ जुड़ने का और समय निकाल कर आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। वीना जी नोवेल फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही कि अगला तराना हो जाए इनके हस्बैंड देव के लिए, और ये जो गीत है दूल्हा बिकता है, इस फिल्म का तराना होगा प्यार की थी ये अदा, बप्पी लाहिरी और मीना की आवाज़ों में। और चलिए यही गाना आप सभी के नाम भी हम डेडिकेट करते हैं, नॉट टू फॉरगेट, आप हमारा साथ दीजिए दोपहर के 2 बजे तक। दिस इज़ योर सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. You're listening to RM3 Radio Man.

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: जी हाँ, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम तो मानते हैं कि ये प्यार, ये इमोशंस, ये अपनापन अगर आपके लाइफ में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी एक अधूरेपन में जी रहे हैं। अगर ये है तो सब कुछ है, क्योंकि प्यार है तो सब कुछ है, और प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अगर आपके अपने हैं आपके पास जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, इस प्यार को बनाए रखिएगा। और अभी के लिए आपका बेशुमार प्यार हमें मिल रहा है इन सुहाना सफ़र, इसके लिए शुक्रिया। देखते ही देखते 12:36 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। गीत गाया पत्थरों ने, आशा जी की आवाज़ में जो अगला तराना है, इसकी फरमाइश यहाँ पर शमीमा जी की ओर से आई है। आज आशा जी की जन्मतिथि है, तो अगर कोई गाना आप सुनना चाहते हैं आशा जी की आवाज़ में, तो बेशक आप हमारा साथ दीजिए इन सुहाना सफ़र।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चले यहाँ पर सुहाना सफ़र के गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं, हमें जानकर बड़ी खुशी हो रही है। और यकीनन गाने तराने ऐसे जो आपकी फरमाइश पर, आपकी पसंद पर हम यहाँ पर चला रहे हैं। और अब बारी है इस अगले तराने की। ये जो अगला तराना है ये भी आशा जी की आवाज़ में है, हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आइए मेहरबा। और इस गाने की जो रिक्वेस्ट है वो आई है पालमा का ट्रिबोन से, माला की ओर से। माला जी जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो थैंक यू सो मच माला जी आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। तो चलिए यह है सुहाना सफ़र प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर, आप सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर के 2 बजे तक चलने वाला है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डेडिकेशन, और आज आशा जी की जन्मतिथि है। ऐसे में हमारे जितने भी लिसनर्स, जितने भी फॉलोअर्स, यस इस समय हम टिकटॉक पेज पर लाइव है, जितने भी लिसनर्स, जितने भी फॉलोअर्स साथ दे रहे हैं, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इन सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन।

इतना जी आपका गाना चल पड़ा कुली फिल्म का ये गाना यहाँ पर चल पड़ा है। आशा जी, शबीर कुमार, इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वी हैव रॉय राजपूत, टाइगर, टाइगर इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टाइगर जी आपको। अनिल राजन जी, अगला गाना आपके नाम और आपके सभी दोस्तों के लिए। माधुरी जी, थैंक यू आपके इस प्यार भरे साथ के लिए, और अगला तराना आपके नाम और परी के लिए भी। ऑलराइट, हाय जेवीना जी और वेदना जी, चलिए कटरबोन से आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। हेलो जी, लव फ्रॉम नेपाल, तो आपने अपना नाम नहीं बताया, चलिए जहाँ से भी साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी हैव मदन, हेलो मदन जी कैसे है। वरुण, आप कैसे हैं। वी हैव निज़ाम बहादुर, यूज़र 6616, ओके। विराज किशन जी, थैंक यू सो मच। सुबी जी, यस सुबी जी, कैसी है आप। आप रेडियो मॉरिशस हो या रेडियो मनोरंजन हो, हमें पता है आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू सिलेक्शन को पसंद करने के लिए। अगला तराना सुबी जी आपके नाम और आपके सभी दोस्तों के नाम भी हम करते हैं, तो चलिए ये गाना यहाँ पर चल पड़ा बड़े ही प्यार से आप सभी के लिए।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो दोस्तों इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर और समाचारों के उस पार सुहाना सफ़र के इस सेकंड आवर में दोबारा हम मिलेंगे और आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। तो हमारा साथ यूं ही देते रहे ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर सुहाना सफ़र।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या प्रतिदिन लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है। ये उद्योग जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस इस क्षेत्र में एक तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है। भुगतान समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी हाईटेक पेमेंट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्री कॉन्फ्लाक में एक कार्यशाला आयोजित की। 155 किलो गांजा बरामद किए जाने के मामले पर बात करते हैं, जो बहापानो रिनियन टापू में जब्त किया गया था। रविंद्र चिमाजी और गुलशन की पहचान इस कथित नेटवर्क के प्रमुख लोगों के रूप में की गई है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं का यही मानना है, जिन्होंने आत्सू के साथ समानांतर रूप से जांच शुरू की है। कल पश्चिमी इलाके में कई जगहों पर तलाशी भी ली गई। ड्रग्स तस्करी से कथित रूप से जुड़े दो नावों को लागुलेट में स्कीपर रविंद्र चिमाजी के घर से जब्त किया गया। वहीं सांसद वेरोनिक ल्यू गोविंद के बेटे युविसन गोविंद से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने खास तौर पर उन पैसों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया, जिनका इस्तेमाल उनकी निजी कार खरीदने के लिए किया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई। और विदेश में सोमवार को एफएल टावर को बंद कर दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों और प्रबंधन के अनुसार ये हड़ताल एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने के विरोध में की गई। बुचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था से जुड़े करीब 100 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को फ्रांस की राजधानी में स्थित इस प्रसिद्ध स्थल का दौरा किया था। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। फोबाक रोड फोंजिसाक में 60 साल की 60 years old श्रीमती निवेदा बिफोयन पैदाशी नाम सिराज और जिन्हें लोग मैडम सुरेखा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे

0: ये आज दिन की दुबे जी इनकी पत्नी, जी हाँ आज दिन के दुबे जी इनके पति, इनके पति संजय बिफोयान के मकान फोबाक रोड फोंजू साक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यागिनी स्त्रियों ले कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मिशन क्रॉस रोड घं बाफू लाल माटी में, मिशन क्रॉस रोड घं बाफू लाल माटी में 82 साल के 82 years old श्री रामावद बंधु, श्री रामावद बंधु जिन्हें लोग राजलाल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी देविका बंधु के मकान मिशन क्रॉस रोड घं बाफू लाल माटी से उठाकर गांधी रोड लाल माटी कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और कोलोनल मेगा स्ट्रीट बुबासे में और 60 साल के 68 years old श्री देवानंद अकू, श्री देवानंद अकू जिन्हें लोग आनंद नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे के मकान कोलोनल मेगा स्ट्रीट बुबासे से उठाकर कॉली व्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: सुहाना सफर।
1: ट्यूसडे 8 ऑफ सितंबर घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 1:07. एक बार फिर से सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है. दिस इज़ द सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफर और इतने प्यार से हमारे लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए. एंड चलिए, यहाँ पर बहुत सारे आशा जी के गाए हुए गानों की फरमाइश हो रही है, तो ऐसे में अगला जो गाना है उमराव जान फिल्म का ये तराना है. आशा जी की आवाज़ में इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, तो ऑब्वियसली ये खूबसूरत सा गाना पिक्चराइज हुआ था एवरग्रीन रेखा जी पर. तो ये गाना जाता है जेवीना आपके लिए. वी हैव शिखा, देन वी हैव देवेन जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवेश कुंजल जी, संगीता, नौशाद, वरुण, तबरेज खान, वीना, कवि सिरीश जी, सुबी जी. अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं. एजे और अंजू, अगला गाना आप दोनों के नाम. अंजू जी आप जल्दी से ठीक हो जाए ऐसी विश हम करते हैं. एंड माधुरी जी, आपने कहा आशा जी का कोई भी गाना, तो ये तराना आपके लिए हम करते हैं, और इसी गाने को बड़े ही प्यार से परी के लिए भी. देन श्यामा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है. वी हैव निर्मला जी, कल्याणी हरी जी, आलमगीर की ओर से गाना उनके बॉयफ्रेंड के लिए, हरिचंद, प्रेमपुरन जी, सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रॉय है जो यूके से हमारे साथ कनेक्टेड है. तो चलिए गाना यहाँ पर चल पड़ा.
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए ये है सुहाना सफ़र और यहाँ पर बड़े ही प्यार से ज्योति जी शाते बनारस से हमारा साथ दे रही है। वी हैव आशनी, सुरेखा, वी हैव सभी मधव परिवार जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है। हर एक गाना अपने आप में एक कहानी होती है, कोई किस्सा होता है, कोई पुरानी याद होती है ना। अगला जो तराना है लहू के दो रंग फिल्म का ये गाना होगा और ये गाना खास कर जाता है अनीता जी आपके नाम जो इस समय हमें सुन रही है। फ्लिक ऑफ लक से गाना जाता है आपके सभी दोस्तों के लिए, आपके सभी फैमिली के लिए और आपकी ओर से हमारी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए भी। सो बहुत बहुत शुक्रिया।

चलिए, ये प्यार ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ये प्यार ही है जो इन गानों के लिए है, ये प्यार ही है जो इन एवरग्रीन तरानों के लिए है। सभी के लिए दोस्ताना फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे किशोर दा और आशा जी की आवाज़ों में।

पिछले दोस्ताना फिल्म के इस गाने के बाद अब बारी है इस अगले तराने की, और ये जो अगला तराना है बड़े ही प्यार से दनेश्वर जी आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से आपकी पत्नी सुनीता के लिए, सभी देवदोस परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। गंगाराम जी हमारा साथ दे रहे, कह रहे कि कोई गाना हो जाए जो किशोरदा और आशा जी की आवाज़ों में हो, तो रॉक गंगाराम जी अगला तराना आपके नाम। अशोक जी के नाम साथ में सुखवंती जी है, वी हैव केशनी, जानव, सभी गंगाराम परिवार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, इंदिरा जी भी बड़े प्यार से साथ दे रही है, वी हैव ज्योति जो हमारे साथ यहाँ पर गानों को एंजॉय कर रही है। और चलिए चल पड़ा ये वादा रहा फिल्म का तराना आप सभी के लिए।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन यहां पर देखते ही देखते दोपहर के पौने दो बज चुके हैं। सुहाना सफर का ये जो सुरीला सफर है आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, इसे बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आशा जी की बात हो और यादों की बारात फिल्म का ये तराना ना चले तो मानो कुछ तो है जो अधूरा है ना। चलिए ऐसे आज ही की तारीख 8 ऑफ सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था और 12th ऑफ अप्रैल 2026 ये चल बसी थी। आशा जी अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जानी जाती है। कहाँ 50 के सालों में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और अपने अंतिम समय तक जो है इन्होंने गाने गाए हैं, फिर चाहे वो हिंदी फिल्मी सॉन्ग हो, पॉप हो, गज़ल हो, भजन हो, इंडियन क्लासिकल हो, कव्वाली हो, रविंद्र संगीत हो, हिंदी के साथ साथ मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कई जो है भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। और इन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग भी की है, अगर आपको पता हो 2013 में एक फिल्म आई थी माई, इस फिल्म में इन्होंने माई का किरदार निभाया है। लगभग 12-13 हज़ार से भी ज़्यादा गाने इन्होंने अपने करियर के दौरान गाए हैं और उनमें से कुछ गानों की बात करें तो इतने कमाल के हैं कि क्या कहें, जैसे कि ये तराना।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर में अब एक ऐसा गाना हम चलाने वाले हैं जिसके लिए आशा जी को नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ, इजाज़त फिल्म का तराना और गुलजार साहब की ये फिल्म थी। फिल्म में संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने और फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। फिल्म में रेखा थी, साथ में इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह जो है नज़र आए थे। और आशा जी की बात करें तो मतलब कि ब्लैक एंड वाइट से लेके कलर्ड सिनेमा का दौर इन्होंने तय किया है और हर शैली में जो है ये काफ़ी माहिर है। और गानों की बात करें तो मतलब कि वो इतनी वर्सिटैलिटी है इनकी आवाज़ में, इतने तरह के गाने इन्होंने गाए हैं कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हो जाए ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम। इजाज़त इस फिल्म से लिया गया, आशा जी की आवाज़ में मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। और चलिए, हमें पता है बहुत से लोगों को ये गाना बहुत ही पसंद है। ऐसे गाने थोड़े से जो है कम चलते हैं, लेकिन जब भी चलते हैं ऑब्वियसली लोगों के दिलों को ये जो है छू जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये गाना बस यहाँ पर आप लोगों के लिए चलने ही वाला है। इसी गाने के साथ सुहाना सफ़र का ये जो सफ़र रहा ख़त्म होने को चला। दो घंटे के इस प्रोग्राम में आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। 2 बजे जो है आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में प्रोग्राम उड़ान की कहानी। उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को। हैव अ लवली लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में मस्कुलर दिस ट्रॉफी से पीड़ित लोगों की देखभाल के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कल सोमवार 7 सितंबर को विश्व ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस के अवसर पर सर शिव सागर राम गुलाम अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। ये पहल कई वर्षों से चल रहे प्रयासों, सहयोग और प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया। हालांकि संस्था की अब मांग है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए एक अधिक उपयुक्त उपकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या प्रतिदिन लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है। ये उद्योग जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस इस क्षेत्र में एक तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है। भुगतान समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी हाईटेक पेमेंट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्लिकॉफ्लाक में कार्यशाला का आयोजन किया। 155 किलो गांजा बरामद किए जाने के मामले पर बात करते हैं, जो भापानो रिनियन टापू में जब्त किया गया था। रविंद्र चिमाजी और गुलशन की पहचान इस कथित नेटवर्क के प्रमुख लोगों के रूप में की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं का यही मानना है। कल पश्चिमी इलाके में कई जगहों पर तलाशी भी ली गई। ड्रग्स तस्करी से कथित रूप से जुड़े दो नावों को लागुलेट में स्कीपर रविंद्र चिमाजी के घर से जब्त किया गया। विदेश में अमेरिकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर कनाडा द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। हालांकि फिलहाल किसी व्यापार समझौते की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इन जवाबी शुल्कों का असर करीब 28 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर पड़ेगा। इनमें स्टील से लेकर फर्नीचर और सूती टी शर्ट तक शामिल हैं। इन उत्पादों पर शुल्क 50% तक लगाया जाएगा। ताज़ी मछली और लॉबस्टर भी इस सूची में शामिल थे, लेकिन कनाडा के समुद्री खाद्य उद्योग के विरोध के बाद इन्हें सूची से हटा दिया गया है। और अमेरिका और कनाडा दोनों के अधिकारियों ने कहा कि वे एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अगस्त के अंत में बातचीत टूटने के बाद उसे दोबारा शुरू करने की दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। कोलिनेल मैगा स्ट्रीट बोबासे में 68 साल के 68 years old श्री देवानंद अकू, जिन्हें लोग आनंद नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। कि अर्थियात सुपहर के 3 बजे इनके मकान कोलिनेल मैगा स्ट्रीट बोबासे से उठाकर कॉलिव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM रिवालो रोड क्रेवकोय में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बुलडाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से भी जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालों रोड खैवकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैवकुआ की श्मशान

0: भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 8:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: की कहानी ईरान की कहानी उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का आपका हम स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ एक और नई उड़ान की कहानी। और आज की एक उड़ान की कहानी बिल्कुल लाजवाब कहानी है और लाजवाब बातें, और जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो एक ऐसा रास्ता तय कर चुकी हैं आगे बढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं उनके जो कदम है जो पीछे छूटते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में। और आज की जो महिला हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, और बिल्कुल आज वे यहाँ पर आई हैं। वे एक एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही साथ उन्होंने LLB ऑनर्स किया है, लॉ ग्रेजुएट किया है, साथ ही साथ वे कम्युनिटी एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, गज़ल के प्रोग्राम को भी एनिमेट करती हैं। और नन अदर देन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस अनिका भयात, जो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं। अनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच रत्ना जी, थैंक यू MBC फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर
0: एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आई नो कि आपका भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट हमारे लिए थोड़ा सा टाइम आपने निकाला है, थैंक यू सो मच। और जैसे हमने आपका जब बायोडाटा देखा, सच अ लवली वन, बट मैं समझती हूँ इट्स नॉट ईजी यहाँ तक पहुँचना। आपकी भी एक बहुत ही लाजवाब कहानी रही होगी, तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो आपका लीगल प्रोफेशन है, आप इस लीगल प्रोफेशन में कितने सालों से जुड़ी हैं?
1: अच्छा रत्ना जी, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कई बार हम लोग अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं और कई बार प्रोफेशन हमें चूज़ करता है। इसी तरह से जैसे मेरी तो पैदाइश ही एक लीगल घराने में हुई थी, मेरे वालिद बैरिस्टर थे, मेरी मदर भी एडवोकेट थी और लेटर ऑन वो जज ऑफ हाई कोर्ट भी बनी। तो मैंने तो अपनी सारी उम्र जो है कानून और उनके असूल और हक की जो है वो बासगश सुनी अपने इर्द गिर्द। तो मेरे लिए जो है लॉ कोई अनकॉमन नहीं रहा, लेकिन मेरी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले मैं, जैसे कि तमाम ख़वातीन होती हैं कि जैसे वो अपनी डिग्री कंप्लीट करती हैं तो उनकी शादी हो जाती है, मेरी भी शादी हो गई, फिर मैं एक माँ बन गई। और जब मैं माँ बनी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और सीखने की तलब हुई। तब मैंने मोंटेसरी कोर्स किया, अपने बेटे के लिए किया, उसको पढ़ाना शुरू किया। और जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लग गया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये जो है एक करियर भी हो सकता है। और मैंने फिर एक स्कूल में जॉब स्टार्ट करी और मैं HSN कॉलेज लाहौर में पढ़ाती रही। और उसके बाद फिर मैंने, जब मैंने HSN कॉलेज छोड़ा तो मुझे लगा कि मैंने अपना जो है उस्ताद जो है अपने साथ लेकर आई हूँ। और मैंने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाना शुरू की व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर। पहले तो हम लोग इस तरह करते थे कि आपस में जो है हमारी बात होती थी, पेरेंट टीचर की डिस्कशंस होती थी, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होती थी, कभी हम तालीम की बात करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उन लोगों का मेरे पे ट्रस्ट बिल्ट हुआ और मैंने उनकी कहानियाँ शुरू सुनना शुरू की, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी बहुत सारी खवातीन को अपने हक का ही नहीं पता। वो एक तकलीफ में गुजर रही हैं, उनको ये नहीं पता कि अपने राइट्स के लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, और फिर मैंने अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट की।
0: ओके, तो जैसे आपने शुरू में बताया कि इट वाज नॉट इजी, एक तरह से आप लॉ से घिरी भी हुई थी, पर इसको एक तरह से प्रोफेशनलाइज करना ये भी एक तरीका होता है कि उसके बारे में और जानकारी रखना। क्योंकि कहीं पर भी आप जाते हैं, कानून बनाए गए हैं लोगों की सहूलियत के लिए, पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप बता रही हैं कि बहुत सारी लेडीज़ हैं उनको अपने हक के बारे में जानकारी नहीं है, और कई बार कोई महिलाएं वॉइस आउट कर नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये हुआ कि आप उन तक पहुंच पाएँ, उनको हेल्प कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ। तो एज अ प्रोफेशन, जब आपने लीगल प्रोफेशन चुना, तो उसमें शुरू में जब आप

0: पढ़ाई कर रही थी, जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे हो जाने के बाद आपने टेकअप किया पढ़ाई करना, तो क्या ये आसान था और किन किन प्रकार के चैलेंजेस से आपका सामना हुआ?
1: रत्ना जी, जिंदगी तो आसान है ही नहीं, ठीक है, चैलेंजेस तो आपको लेने पड़ते हैं। और जैसे कहते हैं कि हर जब भी आप कोई चीज़ सोचते हो तो फिर टाइम के साथ आपको पता चलता है कि नहीं, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। इसी तरह मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस करने पड़े, बिकॉज मैं एक अदद बीवी थी, मैं एक अदद माँ थी, घर की जिम्मेदारी और आपकी दूसरी आपकी जो लाइफ की जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की कि, और हाँ, स्पेशली जब आप एक डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और दोबारा से आप आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और देन अगेन यू नो, फिर मुझे एक चीज़ हमेशा जो है अपने आप को बार बार जो है ना याद दहानी कराई कि मेरी मंजिल क्या है। वो एक कदम, दो कदम बने, दो कदम, तीन कदम बने, और अब 2016 में आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई LLB ऑनर्स।
0: यानी आपके पूरे 10 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सफ़र है मुश्किल से शुरू हुआ, पर धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, आपके कदम बढ़ते गए, आपकी मंजिल और पास और पास आती गई। और बिल्कुल आज जब आप एक इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपने अब तक कितनी लेडीज को हेल्प किया है इसके माध्यम से?
1: मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी तो मेरे प्रोफेशन की इब्तदा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो ऑलरेडी एक ऐसी फैमिली में थी जहाँ पर हर तरफ कानून की बातें होती थी, हमारी तो यूजुअल गुफ्तगू भी कानून के ऊपर होती थी, कानून पे, राइट्स के ऊपर। तो मुझे जो है सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए थी, और आई गेस कि वो इस डिग्री ने मुझे दी है। और अभी तो मेरी इब्तिदा है, अभी तो बहुत सारे मराहिल मुझे तय करने हैं और बहुत आगे जाना है। लेकिन हाँ, मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपने ऊपर, एक चीज़, हर बंदे का एक मकसद होता है, और मेरा मकसद बेसिकली ये है कि मैं जितनी ज़्यादा लोगों को आगाही दे सकूँ कानून की, उतनी ज़्यादा मेरे लिए जो है ना, दैट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ नाउ।
0: बिल्कुल। तो जब आप इस प्रोफेशन में आई और अभी जैसे आप चाहती हैं इसमें और आप आगे ग्रो करें, तो पहले जब आपने अपने हस्बैंड से या फैमिली में जब आपने ये बात छेड़ी कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको लीगल प्रोफेशन में एंटर करना है, तो लोगों का रिएक्शन क्या था, आपके घर परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपकी तरफ?
1: अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मेरा ख्याल है कि हर औरत को अपनी ज़िंदगी में ये सफ़र करना पड़ता है। कई बार हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, जैसे हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ उनकी अनकही बातें भी होती हैं, कुछ वो बातें जो वो बोल रहे होते हैं और वो कह नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो बोल रहे होते हैं, आप महसूस करते हैं। और कई बार आपके ऊपर सेल्फ डाउट भी होता है, आपको लगता है क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरी अभी एज है करने की, क्या लोग क्या कहेंगे, मेन चीज़ है लोग क्या कहेंगे, और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे।
0: और मैं समझती हूँ जैसे एक लेडी के लिए जब बच्चे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है हम पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं हमारे बच्चों की परवरिश में, और फिर जब अगर कहीं ऐसा होता है कि अब पढ़ना तो है पर कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार हमारा जो दिमाग है वो साथ नहीं देता, तो क्या ये चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े?
1: मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है, जैसे आपने मेरे से पहले क्वेश्चन किया कि आपकी फैमिली की सपोर्ट, क्योंकि अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो लाइफ और मुश्किल हो जाती है। मैं नहीं कहती कि लोग कर नहीं सकते, बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं जो करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल डेथ्स में होते हैं वो करते हैं, लेकिन लाइफ और मुश्किल हो जाती है। अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जैसे आपने बोला कि टाइम के साथ आपका मेंटल कैपेसिटी,
0: हाँ,
1: मैं जो है ना इतनी ऑक्यूपाइड होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो असाइनमेंट्स आ रही हैं और साथ ही आपके घर में कोई काम हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: आपके बच्चों का कोई मसला हो रहा है या बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप थोड़े ओवरवेल्म ज़रूर होते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स ईजी, बट हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप अपनी पूरी जो है वो नज़र अपनी जर्नी पर रखो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये छोटे छोटे मसले, तो वो कहते हैं ना, इस बादे सबा से मत घबराए साकी, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कई बार होता है कि ये जो तकलीफें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, पर ये हमें स्ट्रांग बनाती हैं, और चैलेंजेस जो हैं यही हमारे लिए एक उड़ान का ज़रिया होती है, और जो हार कर बैठ जाते हैं वो कभी उड़ान भर ही नहीं पाते। और ये कहानी जो है बिल्कुल उड़ान की कहानी, जहाँ पर हर महिला की अपनी एक चैलेंजिंग कहानी होती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, पर होती ज़रूर है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, और आज हमारे साथ अनीका जी जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसे ही मज़ेदार गीतों के साथ हमारे इस टेक्निकल टीम पर हमारा साथ दे रहे हैं शिव और उरुसा बानू हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट, और सिल्वैन हमारे प्रोड्यूसर जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रहे हैं। आते हैं गीत का ब्रेक लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।

0: की कहानी, उड़ान की कहानी, बिल्कुल उड़ान की कहानी। और आज हमारे साथ अनीका जी जुड़ी हुई हैं, तो उनके बस कहते हैं ना कि कुछ बार ऑनर्ड कुछ शब्द हमें बोलने चाहिए उनके लिए भी, जो बहुत मेहनत करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। बिल्कुल, उड़ान जिसे भरनी होती है उसके लिए आसमान भी कम पड़ता है। और यहाँ पर उन्होंने एज अ एजुकेशनिस्ट भी काम किया है, तो आइए जानते हैं कि उनकी एजुकेशनिस्ट की जर्नी कैसे रही। और बिल्कुल, आपने बताया शुरुआत में कि आप एक एजुकेटर भी रह चुकी हैं, तो एजुकेटर रहने की जो जर्नी रही, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें?
1: एक तो रत्ना जी, मैं बोलूँगी कि अगर हम महसूस करें तो आपको पता है कि जो भी माँ होती है जितनी भी डिग्रीज वो ले ले, लेकिन वो बच्चों के साथ खुद ही पढ़ती है, राइट? तो जहाँ तक मेरा मामला है, मैंने HSN कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने होती है और उसके बाद उस्ताद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है।
0: सही।
1: और एक उस्ताद एक तालिम को बनाने वाला भी होता है और बिगाड़ने वाला भी होता है। अगर आप याद करें, आप कभी भी अपनी टीचर याद होंगी जो बहुत सख्त होंगी,
0: बहुत सख्त होंगी, वो भी याद थी, और जो बहुत प्यार करती थी
1: वो भी याद है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मेरी जो, शायद आपको पता है कि लाइफ में आपकी चीज़ें होती हैं शायद आपको एक रास्ता दिखाने के लिए होती है, और मुझे नहीं पता था कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर को लेके जाएगा, दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर को आगे लेके जाएगा। तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम देयर रिजल्ट्स, मुझे कुछ शो करना है। और हर बच्चे में कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, अगर आप नोटिस करें तो हर बच्चे में होती है, और जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको शाइन करना, उसको बफ करना एक टीचर का काम होता है। तो और उस्ताद, मैंने आपको बोला ना कि उस्ताद एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसके लिए मैं छोटा सा शेयर अर्ज करूँगी, उस्ताद की इज्जत को ना तोल, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि, और जैसे बच्चों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, परसवेरेंस सीखी, और मैंने ये सीखा कि जब वो बच्चों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं ना, वो आपको इतना एलिवेट करती हैं, जब उनकी सक्सेस में आप अपनी सक्सेस ढूंढते हो। सो आई थिंक इट वॉज अ टू वे जर्नी एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, बिकॉज इस जर्नी के दौरान मेरा एक और नया चैप्टर शुरू हुआ जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अनीका जी जो हैं वो सोशल पेज पर भी काफ़ी वायरल हैं, और काफ़ी मतलब उनकी इतनी सारी उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उनका आइडिया क्या था इसके पीछे का? बिल्कुल ज़रूर हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनाई, तो पहले तो अनीका जी, आपके दिमाग में कम्युनिटीज़ बनाने का जो आइडिया है वो कैसे आया, और इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा?
1: रत्ना जी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ज़िंदगी का हर सफ़ा एक दूसरे सफ़े के साथ जुड़ा
0: रहता है, सही।
1: तो इसी तरह जब मैंने HSN कॉलेज छोड़ा, तो मैंने HSN कॉलेज एज अ टीचर ज़रूर छोड़ा था, लेकिन मेरे अंदर का टीचर कभी मरा नहीं था। तो मैंने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाना शुरू की, जिसके अंदर

0: हम लोग व्हाट्सएप की कम्युनिटीज बनाई, फेसबुक की बनाई, जिसके अंदर वालदैन को बताते थे, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात करते थे, हम उनको हेल्प करते थे कि कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं. और क्योंकि मैंने आपको बोला कि आई वाज अ मोंटेसरी ट्रेंड टीचर आल्सो, सो दैट हेल्प मी टू हेल्प अदर पेरेंट्स आल्सो. लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम्युनिटीज़ कैसे बढ़ती चली गई, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती गईं जिसमें हमें पता चला कि कौन कौन सी हमारे हमारे मेम्बर्स की ज़रूरियात हैं, और उसी के साथ हम लोगों के सब ग्रुप्स भी बनते चले गए, और जिसके अंदर हमने छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाई, जैसे बाय सेल, जैसे एडवर्टाइज फॉर यू, जैसे हाइकिंग ग्रुप्स, ताकि जो उनकी ज़रूरत है, जॉब फॉर यू. सो बेसिकली हम लोग भी आगे सोशल मीडिया से लेके वहाँ पे डालते हैं, लेकिन अगर आपकी तवस्सत से किसी की हेल्प हो जाती है तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती.
1: बिल्कुल. एक ज़माना था जब हमें मतलब किसी से पूछना पड़ता था, पता नहीं हमें वो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी नहीं मिलेगी, पर आज के समय में जैसे आप बता रहे हो कि एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी है जहाँ पर इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं, जहाँ पर आपकी जो भी ज़रूरियात है अगर आप वहाँ पर पूछते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करने के लिए,
0: कोई जवाब देने के लिए मौजूद है.
1: तो आप बता सकते हो टोटल कितनी कम्युनिटीज़ है इसमें?
0: हमारी मेन वन जो हमारी सबसे मेन वाली ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड वीमेन नेटवर्किंग, वीमेन पावर मॉरिशियस नेटवर्किंग.
1: इसमें मतलब ज्यादातर बेसिकली सारी लेडीज ही हैं.
0: जी बिल्कुल. दैट इज बेसिकली, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, बेसिकली इट स्टार्टेड विद द वीमेन, बट नाउ we have good men also. Okay. So it is a mixed one.
1: It's
0: also
1: growing.
0: Yeah, it's growing.
1: Uh-huh.
0: But there are specific groups which are only for women, and there are specific groups which are mixed ones. So hamari jo total, in total hai, that is approximately 34.
1: Oh, wow. तो आप बता सकते हो कितने members अब तक जुड़ चुके हैं?
0: हमारे पास माशाल्लाह से हमारा जो वीमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप है, स्पेसिफिकली जो वीमेन पावर मॉरिशस है, उसमें मोर देन 400 खवातीन है ऑल अराउंड द आइलैंड. और रत्ना जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें प्रोफेशनल भी हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इसमें होम मेकर्स भी हैं.
1: ओके.
0: और इसके अंदर हर वो खातून है जो कि कुछ ना कुछ जिसके अंदर जस्तजू है, कुछ जानने की, कुछ पहचान.
1: कहीं ना कहीं आज नेटवर्क का जमाना है, यानी सिर्फ आपको जुड़ना है और आप देखेंगे ये किस तरह से बढ़ता चला जाता है. तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे अनिका जी कि इस कम्युनिटी को कितना टाइम हुआ अब तक मतलब जब से आपने शुरू किया?
0: मैं आपको बताऊं, एक्चुअली कम्युनिटी तो मैंने तब बनाई थी 2014 में बनाई थी, लेकिन जहां जहां मैं जाती गई वहां वहां वो नेटवर्क बढ़ता गया. लाइक आई वेंट टू दुबई तो वहां पे वीमेन पावर दुबई बना दिया, पाकिस्तान था तो वीमेन पावर पाकिस्तान बना दिया, मॉरिशस का तो वीमेन पावर मॉरिशस बना दिया, और वो कम्युनिटीज खुद ब खुद चलती जा रही हैं. सो आई डोंट वांट टू लाइक सी हाउ इट इज़ गोइंग. जैसे सेकंड हैंड बाय एंड सेल है तो उसमें खवातीन खुद कर रही हैं, बाय एंड सेल है तो वहाँ कर रही हैं. इसी तरह फूड लवर्स है तो वहाँ पे जो खवातीन है, जैसे केटरर्स
1: हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है अपनी चीजों की,
0: एंड इवन एक्सपर्ट ग्रुप भी है हमारे पास. अगर आप इस मुल्क में नए हैं और आप चाहते हैं कि अपने दोस्त को, आप कोई दोस्त ढूंढना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी मॉरिशस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन.
1: यानी मतलब कोई भी इस ग्रुप में साथ जुड़ सकता है, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं. अपना छोटा मोटा कारोबार बढ़ाना चाहती हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं, जैसे अभी अनिका जी ने बताया कि आप होम मेकर हैं और घर से ही बिजनेस करती हैं, कोई भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंटिंग को लेके कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप उसके साथ भी जुड़ सकती हैं, हाइकिंग पर जाना चाहती हैं तो इस पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यानी एंटरटेनमेंट से लेके इन्फॉर्मेशन से लेके एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें आपने अपने कम्युनिटी में क्रिएट करने की कोशिश की है. और इसका क्या पॉजिटिव, मतलब आप देख रहे हैं कि अभी तक इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है?
0: मैं आपको बताऊँ, बेसिकली कोई कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन जब तक वो कम्युनिटी अपना आउटपुट नहीं दे रही तो उसका फायदा नहीं,
1: फायदा नहीं है. सही
0: तो
1: बात.
0: अगर इस ग्रुप से किसी को फायदा हो रहा है तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो मेरा एम बेसिकली उसी पर है कि मैं किस तरह से किसी को फायदा दे सकती.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही.
0: सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट एंड आई होप कि आपकी नियत साफ हो तो चीजें भी खुद ब खुद आपके रास्ते बनते जाते हैं.
1: बिल्कुल. और आपने जैसे बताया कि ये कम्युनिटी, और आज जैसे इंटरनेट के माध्यम से ये कहते हैं ना कि बस आपको एक चिंगारी देने की जरूरत है, हवा लगती गई और वो जैसे बढ़ती गई और बहुत बहुत तेजी से अब तक जैसे 400 और बस ऊपर वाले की अगर मेहरबानी रही तो मैं समझती हूँ ये तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक से एक कड़ी मिलती जाती है और कारवां आगे बढ़ता चला जाता है. साथ ही साथ एक बहुत ही मजेदार बात अनिका जी से मैंने जानी है कि उन्होंने चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, जी हाँ, एक ऐसी एक एसोसिएशन कह सकते हैं या फिर एक ऐसी हेल्प शुरू की है जो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही नोबल कॉज है. और आज के समय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा

आइडिया भी किसी के दिमाग में आना और उसे एग्जीक्यूट करना और उसको मतलब आप देखो आपकी आंखों के सामने वो किस तरह से बढ़ता है, ये भी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं और आपको बताते हैं अभी थोड़ी ही देर में कि चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी क्या है और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक गीत के बाद मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: की कहानी, उड़ान की कहानी। जी हाँ, उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। और आज हमारे साथ अनीका जी जुड़ी हुई हैं। और अनीका जी बिल्कुल जज्बाती हैं, पर साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल है और आज के समय के साथ चलने वाली एक ऐसी स्ट्रॉन्ग, ऐसी एक सशक्त नारी हैं जो आगे बढ़ने के लिए न केवल खुद आगे बढ़ना चाहती हैं पर दूसरी महिलाओं को, दूसरी लेडीज़ को, दूसरी औरतों को भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि लीगल एडवाइस, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज़ आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ से गुजरती हैं जहां पे वे नहीं जानती कि किस तरह से वे कानून की हेल्प ले सकती हैं, कानून उसकी किस तरह से मदद कर सकती हैं। और कई बार कहते हैं ना कि समाज में महिलाओं को कई बार बोलने तक नहीं दिया जाता, वहां पर उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया है जहां वे उनकी समस्याओं को कानून के किस तरह से, किस पहलू से जोड़ सकती हैं, किस तरह से कानून उनकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इस पर वे बहुत काम करती हैं। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, आइए जानते हैं ये वाकई में है क्या। चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए अनीका जी।
1: रत्ना जी, मैंने ना एक चीज़ सोची थी कि जैसे हम लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई थी, तो मैं चाहती थी कि कम अज़ कम हम लोग मिल के कुछ अच्छा सोशल वर्क करें।
0: बिल्कुल।
1: तो आई फ्लोटेड दैट आइडिया, इट वॉज इन 2019 amongst the ladies, कि हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और हम लोग एक वक्त का खाना देंगे, बट क्वालिटी मील इन 10 rupees, एंड दैट 10 rupees इज अ सिम्बोलिक टोकन विच इज़ री रोटेटेड इन द चैरिटी। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे हमारे जो डेली वेजेस के लोग हैं, जिनकी जिनकी जो बेसिक अर्निंग है लाइक हार्डली 700-800 rupees होती है, वो लोग सेव करते हैं वो अर्निंग, क्योंकि उनकी एक मुकम्मल इनकम नहीं है, दे डोंट गेट मंथली पेड, दे गेट डेली वेजेस पर, आज हुई कल नहीं होगी। तो हम लोग उनको एक टाइम का क्वालिटी मील दें, लेकिन उस तरह से दें जिस तरह से हम अपने लिए पसंद करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चिकन बिरयानी या चना पुलाव होता है, टेक अवे में होता है, और हर थर्सडे को जो है करते हैं। इट्स बिन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7-8 years होने वाले हैं।
0: ओके, और ये कहाँ पर होता है?
1: ये पाकिस्तान में होता है।
0: ओके,
1: लेकिन इंशाल्लाह मेरी अगेन इट इज़ काइंड ऑफ माई मैनिफेस्टेशन कि मैं मॉरिशस में भी ये शुरू करूँ। मेरी वालदा की डेथ हो गई थी 2022 में, तो मैंने उसका नाम लेट जस्टिस फखरुन्निसा चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी के नाम से कर दिया,
0: शुरू किया था।
1: हाँ जी, और ये अभी कंटिन्यू उन्हीं के नाम पे कंटिन्यू हो रहा है, अभी थर्सडे हम लोग देते हैं।
0: ओके ओके, यानी ये पाकिस्तान में आज भी
1: चल रहा है।
0: और लगभग कितने लोगों को आप ये प्रोवाइड करते हैं?
1: तकरीबन हमारी दो देगें होती हैं, तो तकरीबन 250 लोग खा लेते हैं।
0: ओके, यानी मतलब 10 rupees में आप उनको एक क्वालिटी मील देती हैं, जैसा आप हमारे लिए, मतलब कहते हैं ना कि इंसानियत के तौर पर हम जैसा खाना पसंद करते हैं, ढंग से साफ सुथरा, उसी प्रकार से उनको भी सर्व किया जाता है। और 10 rupees में, मतलब आज के समय में 10 rupees में आपको भरपेट खाना मिलना बहुत, मतलब ये तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि 10 rupees में हमने एक भरपेट, और ख़ासकर जब बिरयानी की बात करें या पुलाव की बात करें, तो ये मिलना तो भाई बहुत दूर की बात है। और आज के समय में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकली आप देखिए दुनिया भर की जो कंडीशन है अभी, जैसे बहुत ज़्यादा हिली हुई है, और ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में भी आपने अभी तक उसके दाम नहीं बढ़ाए, बिल्कुल उसी प्राइस में आप दे रहे
1: हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जो 10 rupees तो हमने एक सिंबल रखा ना, हमने एक सिंबल रखे, अगर आपको भूख लगी है तो आपको ये महसूस ना हो आपको खैरात दी जा रही है, तो आप जाएं, आप 10 rupees दें और अपना बिरयानी का पैक ले लें। और बेसिकली क्योंकि इवन जो टेक अवे होता है अप्रोक्सीमेटली 10 rupees का हो जाता है, तो वो उसमें रीरोटेट हो जाता है। सो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप डिग्निफाइड वे में आएं और खाना ले लें। सो वी डोंट माइंड हु इट इज, आपका रिलीजन क्या है, आप कौन हो, आपकी जात क्या है, अगर आपको भूख लगी है You can eat it.
0: हाँ, मतलब जैसे एक तरह से बहुत ही, और मैंने खुद अनीका जी का वीडियो देखा जिसमें वो इतनी प्यार से, मतलब जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सभी लोग बकायदा लाइन में खड़े रहकर बहुत ही क्लीन तरीके से उनको ढंग से ये खाना दिया जाता है, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या ना कि कोई, मतलब कई बार होता ना कि खाने पीने वाली जहाँ जगह होती है और ख़ासकर जहाँ पर खाना बट रहा होता है, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत बुरे हाल होते हैं कि मुझे पहले बस मिल जाए, मेरा पेट पहले भर जाए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ढंग से उनको किया जाता है। और वैसे इस चैरिटी को कितने लोग मिलकर चला रहे हैं?

0: ये बेसिकली हमने अपनी मदद आपके तहत किया था, सो वी स्टार्टेड इट ऑफ लाइक दैट. एंड हमें नहीं पता था कि हम लोग इतना अरसा लेके चलेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप एक चीज़ करते हो अपने रब के रास्ते में तो रब खुद ही रास्ते बनाता जाता है.
1: बिल्कुल. और मैं समझती हूँ आज कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है. आज देखा जाए तो दुनिया भर में जहाँ पर बहुत दंगे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहीं कहीं पर कहीं ना कहीं एक मिसाल बनाना और इंसानियत को लेकर आगे चलना, ये एक बहुत ही नोबल कॉज है. और जैसे आपने बताया कि चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, तो जब 2019 की आपने बात की तो मैं समझती हूँ उसके तुरंत बाद तो 2020 में हमने पूरी दुनिया ने कोरोना की महामारी को देखा, और एक ऐसा एपिडेमिक जहां कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सब कुछ ठप पड़ जाएगा. तो क्या ऐसे दौर में भी आपका जो चैरिटी था वो चल रहा था?
0: रत्ना जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आपको बताती हूँ. देखें, कोविड, मैंने आपको बोला ना कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनको खाना मिल सके.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर कोरोना आ गया तो लोग अपने घर में उनको मुलाजिम को नहीं बुलाते.
1: सही बात.
0: राइट.
1: मतलब उनका तो काम बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ,
0: तो अब वो मुझे बताएं कि वो क्या करेंगे. लेकिन हमने फिर भी पूरी प्रिकॉशंस लेके हम लोग वीकली तौर पे हम लोग देते थे और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे.
1: यानी हफ्ते में एक बार आप?
0: जी बिल्कुल.
1: और आज भी वो बिल्कुल
0: चल रहा है.
1: बिल्कुल चल रहा है. तो जैसे आपने बताया, तो पहले तो इसका जो आइडिया है आपके दिमाग में प्रॉपअप कैसे हुआ, मतलब आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया? क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है जिससे पूरी तरह से प्लानिंग के बिना एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता. और आप यहाँ हैं और इसका ये जो मतलब चैरिटी है वो चल रही है पाकिस्तान में, आपने जैसे बताया, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपका जो मम्मी का मतलब कहते हैं ना ननिहाल जो है वो पाकिस्तान से है, तो बिल्कुल आपने वहाँ पर करना शुरू किया. तो यहाँ पर बैठकर उसे पूरा ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना वहाँ पर, तो प्लानिंग आपकी कैसे शुरू हुई?
0: देखिए रत्ना जी, अब तो दुनिया सिमट के आ गई ना.
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल हाथ में आ गई. व्हाट्सएप है, हमारे पास कॉल्स है. व्हाट्सएप इट्सेल्फ इज अ वेरी बिग कन्वीनियंस फॉर अस. सो हर चीज़, हर कोऑर्डिनेशन, हमारा चैरिटी का एक ग्रुप बना हुआ है, हमारी हर कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली उसके ऊपर होती है. और मुझे पता होता है कि वो कहाँ है, और मैंने उनको स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि एक डब्बा ज़रूर मेरे घर में देना है.
1: हाँ.
0: ताकि मुझे पता चले कि क्वालिटी ऑफ मील इज़ द सेम, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि अगर हमने कहा है कि चिकन बिरयानी है तो उसका टेस्ट वही हो जो मैं अपने अपने अपनी फैमिली को खिलाऊँ, अपने घर वालों को खिलाऊँ, तो फिर मैं वो बांटूँ. सो बेसिकली ये चीज़ आपको रखनी पड़ती है ताकि उनको भी पता हो कि हाँ जी हमारी क्वालिटी चेक हो रही है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 10 रुपए में दे रहे हैं तो जैसा तैसा कुछ भी आप दे दो. लेकिन वो वही तो कहते हैं कि डिग्निटी. बिल्कुल, एक तरह से आपने उसी इज्जत के साथ, उसी ईमान के साथ आपने उन लोगों को ये पहुँचाया. ये एक बहुत ही बड़ी बात है. और जैसे आप अनिका जी, आप एक प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप गज़ल के प्रोग्राम भी करती हैं, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई एज अ गज़ल. गज़ल नाइट को आप मतलब प्रेजेंट करती हैं, एनिमेट करती हैं.
0: जी जी. देखिए मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ में हमेशा सीखना चाहिए. और आपकी जर्नी भी, आप लाइफ में जो आपकी कंट्रीब्यूशन अगर आप सोसाइटी में दे सकें तो ज़रूर दे दें. तो इसी तरह से जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली रेडियो 7 मॉरिशस की तरफ से, और क्योंकि बेसिकली वो कैनमा के साथ इन कोलैबोरेशन है, तो मुझे लगा कि मैं इस मकसद के लिए, जो कि एक नेक मकसद है, इसके लिए ज़रूर मैं इसमें शामिल होंगी. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द प्रोग्राम विद देम. और बेसिकली जब हम गज़ल का प्रोग्राम करते हैं तो हम सब बातें भी करते हैं, हम लोगों को कैंसर की आगाही भी देते हैं, हम हेल्थ की हेल्थ के बारे में बताते भी हैं, और कुछ अनकही बातें भी कहते हैं जो शायद उनके दिल को जाके लग जाती हैं.
1: तो अब तक मतलब कितने, मतलब किसी का ऐसे मतलब आपको रिस्पॉन्स मिला है जहाँ पर आपको दिखाई दिया कि आपके जो भी प्रोग्राम्स आप करती हैं उसका असर हुआ है?
0: रत्ना जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई कि मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर जब हम गज़ल नाइट कर रहे थे दिल से गुफ्तगू अनिका के साथ में, तो मैंने उसमें एक बात की कि अपना चेकअप कराएं. और हम ख़वातीन एज अ बेटी, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, कई बार अपने आप को भूल जाती हैं. बिल्कुल भूल जाती हैं. तो हमें अपना रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज आया जिसमें उसने कहा बहुत देर हो गई मेहमान आते आते. तो वो मेरे दिल को जाके लगा, बिकॉज शी इज़ बेसिकली शी इज़ सफरिंग फ्रॉम ग्रेट थ्री कैंसर. और उसको लगा कि हाँ शायद बहुत देर हो गई है. तो मैंने उनसे बात की, उनका व्हाट्सअप जब मैसेज आया तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मतलब कभी देर तो होती नहीं है, आप बहुत

0: आप हमारी लाइफ में जब भी कोई सख्ती हमारे पे आती है तो हमें कोई पर्पस देती है, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं, ये सख्ती, हम इसको सख्ती नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ये कोई पर्पस है, क्योंकि वो रिलेट कर सकती हैं हाउ पीपल आर गोइंग थ्रू.
1: ट्रू. और मैं समझती हूँ एक ऐसा दौर है जहाँ पर अपनों का और परायों का, जैसे हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारा हाथ छोड़कर हमें चला गया, क्योंकि मैं समझती हूँ मुश्किल का दौर हमें यही सिखाने के लिए आते हैं. और जैसे आपने बताया कि कैंसर पेशेंट्स के साथ भी आपने ऐसे प्रोग्राम्स किए ताकि प्रोग्राम के माध्यम से उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले. कई बार जैसे आपने कहा ना कि कई बार लेडीज़ अपनी हेल्थ को ही निग्लेक्ट कर देती हैं, बहुत सारा कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इस कदर उलझ जाती हैं कि उनको अपनी खुद की हेल्थ का पता ही नहीं चलता. और हमने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पर कैंसर के लिए भी हमने कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी दी है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल कैंसर एक ऐसा दीमक है जो कहीं ना कहीं आपको लास्ट मोमेंट पर पता चलता है कि आप बहुत देर हो चुकी है, पर जहाँ पर एक इंसान के मन में जीने की चाह है, उस जीने की चाह को कहीं ना कहीं जगाना, मैं समझती हूँ एक एनिमेटर, एक प्रेजेंटर और आप भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी हैं जहाँ पर लोग आपकी आवाज़ को सुनकर या आपके प्रोग्राम्स या आपके जो गज़ल के सिलेक्शंस हैं उसे सुनकर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ उनको भी एक हिम्मत शायद जागती होगी.
0: बिल्कुल, जैसे आपका ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम है उड़ान की कहानी, इसके अंदर हम हर बंदे के बारे में बताते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं, तो मुझे लगता है कि देखें जैसे आप एक बहुत बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं कम्युनिटी बिल्डिंग में. एक्चुअली अगर आपकी बात सुनकर एक बंदा भी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर एक अपने आप से क्वेश्चन करता है क्या बहुत देर हो गई मुझे, तो मेरा ख्याल है कि हम सक्सेसफुल हो गए इस मामले में.
1: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं वो एक कड़ी है, बस हमें वो एक चिंगारी है जो उनके मन में जगानी है, जीने की चाह है वो जगानी है. और ये एक मंच है जहाँ पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो बस एक आवाज़ की ही देरी है, एक दूरी है, हम कह सकते हैं कि आप बस आवाज़ लगाओ, दुनिया आपके लिए बस वेट कर रही है आपको हेल्प करने के लिए. और जैसे आप एक लेडी है, आप प्रोफेशनल लाइफ से भी कनेक्टेड है, पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड है, सो बीइंग अ लेडी आपके लिए पर्सनली कितना डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ बैलेंस करना?
0: देखिए रत्ना जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि बैलेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज करना होता है.
1: बिल्कुल,
0: कभी आपको फैमिली लाइफ प्रायोरिटाइज करनी होती है, कभी आपको प्रोफेशनल लाइफ प्रायोरिटाइज करनी होती है, कभी कम्युनिटी लाइफ प्रायोरिटाइज करनी होती है, तो बैलेंस तो हम कह नहीं सकते. हमें देखना है कि अभी ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है. और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना
1: ज़रूरी हो जाता है. और कहते ना कि सभी के लिए 24 घंटे ही हैं, ऊपर वाले ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन जैसे अनिका जी ने कहा ना कि उस समय पर, उस टाइम में आपके लिए क्या ज़्यादा महत्व रखता है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको अगर आप ध्यान में लेकर उसे ठीक कर पाए तो मैं समझती हूँ बस जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती चली जाए. और बिल्कुल बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी अनिका जी, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है?
0: रत्ना जी, मैं वीमेन एम्पावरमेंट का मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं इसको इसको ये समझती हूँ कि ये मर्द के मद्दे मुकाबिल होना है ना उसके पीछे होना है. वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि ख्वातीन अपनी वॉइस को, अपने मकसद को और अपने विजन को, उनके माइंड में ये होना चाहिए, और उनकी आवाज़, अगर वो भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो उनको पता हो, उनको इतनी अवेयरनेस हो कि अगर वो लेना चाहें डिसीजन तो वो ले सकती हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि हर खातून के लिए उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है. कुछ के लिए अपना करियर होता है, कुछ के लिए अपने बच्चे होते हैं, कुछ के लिए अपने हस्बैंड होते हैं, कुछ के लिए अपने इन लॉज होते हैं. तो मुझे लगता है कि वीमेन एम्पावरमेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश ओनली टू द प्रोफेशनल पीपल ओनली. सो वीमेन एम्पावरमेंट इज़ बेसिकली द विजन. अगर हम किसी को ये विजन दे दें कि नहीं, ये आपका हक है, ये आपका राइट है, और आपके पास इतनी इतनी हिम्मत हो कि आप उस राइट के लिए बोल सकें, सो दैट इज़ वीमेन एम्पावरमेंट फॉर मी.
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार हम वीमेन एम्पावरमेंट, जैसे आपने कहा ना कि कई बार हम अपनों को, अपने को बैक सीट पर बिठा देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और कहीं ना कहीं यही भूल जाते हैं कि हमारी भी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, अपना खुद का एक ओपिनियन है, हमारा भी एक डिसीजन है जिसे वॉइस आउट करना बहुत ज़रूरी है. तो अनिका जी, आप एक लॉ स्टूडेंट रह चुकी हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और जितनी लेडीज़ इस वक्त हमें सुन रही हैं, हो सकता है कि कई बार

0: शादी के काफ़ी समय के बाद उन्हें भी ये प्रोफेशन में जाना है, मन करता है, तो उनको आप किस तरह से इंस्पायर करेंगी, उनको क्या कहेंगी? क्योंकि जैसे हमने कहा ना शुरू में कि कई बार हम अपनी ही जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं ये हमें याद तक नहीं रहता। करना भी चाहें तो कई बार हम सोसाइटी के तानों से बचकर, या कई बार हम कहते हैं कि छोड़ दो अब इस उम्र में क्या पढ़ाई करना, कई बार 40s के बाद पढ़ाई टेकअप करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी लेडीज़ को आप किस तरह से इंस्पायर करेंगी?
1: रत्ना जी, मेरा तमाम ख़वातीन के लिए एक मैसेज है, और मेरा मैसेज ये है कि अगर आपका कोई ख्वाब है, अगर आपका कोई विजन है, अगर आपका कोई शौक है जो कि आपने उसको पसे पर्दा डाल दिया क्योंकि आप एक अदद बेटी हैं, एक अदद बहन है, एक अदद बीवी हैं, एक अदद माँ हैं, और आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। और ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप करना चाहते हो 20 साल में पढ़ें या 40 साल में पढ़ें, पढ़ाई तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज आएगी। विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हर खातून को, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं इस वक्त, तो प्लीज़ थिंक व्हाट यू वांट टू डू एंड डू इट, डोंट इवन थिंक। और प्लीज़ सोसाइटी की तो बातें सुने ना, क्योंकि अगर आप सोसाइटी की बातें नहीं सुनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, और वो लोग कौन है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि कई बार लोगों के बातों में आकर, लोगों के डर से हम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं, जीना ही भूल जाते हैं। कई बार उनको प्लीज़ करने के लिए, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है, उनको बस प्लीज़ करने के लिए हम अपने ख्वाबों को बस कहते हैं ना दबा के रख देते हैं। और कई बार ये सारी जो है चीज़ें हमारे घर से शुरू होती है। कई बार जैसे अनिका जी ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है कई बार हमारे घर से ही शुरू होती है। कई बार हम अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, हम कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उनसे ये बात नहीं कह सकते। और जैसे अनिका जी ने कहा, बिल्कुल अगर आप करना चाहती हैं तो रुकिए मत, बस वॉइस आउट करिए और फिर देखिए किस तरह से दुनिया बदलती है। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में। आज हमारे साथ है अनिका भैया, जो हमारे साथ बिल्कुल शेयर कर रही हैं अपनी जिंदगी की कहानी।

0: की कहानी,
1: उड़ान की कहानी,
0: उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। और इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ बने हैं शिव और उरुसा बानो, हमारी प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, और प्रोड्यूसर है सिल्वेन। और आज हमारी मेहमान हैं अनिका भैया जी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही क्लियर विजन रखने वाली ऐसी महिला। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के लगभग एंड तक हम आ पहुँचे हैं। तो अनिका जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और बिल्कुल आपकी फैमिली को, जो हमेशा आपकी साथ आपके साथ खड़ी रही हैं, सपोर्टिव रही हैं। और जाते जाते हमारी जितनी भी औरतें, जितनी भी लेडीज़ इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, जितने भी पुरुष लोग भी सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: रत्ना जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और MBC आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम बनाया है। और मैं आप सबको एक ही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ स्प्रेड लव, प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये बहुत ज़रूरी है, हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
0: सही बात। और बिल्कुल आज हमें कहीं ना कहीं, कहते ना कि एक वो छोटी सी प्यार की चिंगारी हमें हर दिल में जगानी है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का सहयोग देना है, और कहते ना कि लेट्स ग्रो टुगेदर, साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल हमें फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही था आज का मैसेज। और अनिका जी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टेक्निकल टीम को हम एक बार फिर धन्यवाद कहेंगे, और साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑडियंस, हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नई उड़ान की कहानी को लेकर। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।
1: उड़ान की कहानी,
0: उड़ान की कहानी।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें पूजा से आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी को मेरा नमस्कार मॉरिशस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों की देखभाल के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम कल 7 सितंबर को विश्व जुशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जागरूकता दिवस के अवसर पर SSIN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। ये पहल कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और प्रतिबद्धता का परिणाम है जिसका उद्देश्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया। संस्था की अब मांग है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए और अधिक उपयुक्त उपकरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मॉरिशस में डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच गई है। ये उद्योग जो वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉरिशस इस क्षेत्र में एक तकनीकी हब के रूप में उभर सकता है। हाईटेक पेमेंट सिस्टम ने इस विषय पर 8 सितंबर को फ्ली कॉन्फ्लैक में एक कार्यशाला का आयोजन किया। विदेश में अमरीकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर कनाडा द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। फिलहाल किसी व्यापार समझौते की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उधर कल सोमवार को एफएल टावर को बंद कर दिया गया क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारियों और प्रबंधन के अनुसार ये हड़ताल एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने के विरोध में की गई है। तो ये थी अब तक की खबरें कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉय रोड लाफ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मौघा, श्री रूप नारायण मंगरा, जिन्हें लोग ललन नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉय रोड लाफ्लोरा से उठाकर घोंबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। और रिवालो रोड क्रेवक्यूर में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बल्दुआ ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। रिवालो रोड क्रेवक्यूर में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बल्दाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालों रोड खैवकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैवकुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 3:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं कि आज पॉलिटेक्निक जो है मॉरिशस से हमारे बीच कुछ रिसोर्स पर्सन जुड़े हैं, वहाँ के लेक्चरर्स जुड़े हैं और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में जो भी कोर्सेज दिए जाते हैं उस पर ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी। और ख़ासकर हम आज पॉलिटेक्निक्स के दो विशेष जो है क्लस्टर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो होगा टूरिज़्म और साथ में आईटी। ये अपने आप में ऐसे जो है क्षेत्र है जो समय के साथ बहुत ही डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है हमारे स्टूडेंट्स को मिल रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में जो है इन सभी विषयों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटेक्निक से दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मिसेस दृष्टि बोनमाली पूरन जी, जो एकेडमिक अफेयर्स ऑफिसर है फॉर द आईटी एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्लस्टर। दृष्टि जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।

0: सुमिता जी
1: एंड देन वी हैव उर्वशी दुकन जी जो है एसोसिएट लेक्चरर फॉर द टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी लेजर एंड स्पोर्ट्स क्लस्टर. तो आपका भी स्वागत है उर्वशी जी.
0: धन्यवाद.
1: और अगर हम पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो हमारे जो सुनने वाले हैं जो हमारे श्रोता है जो हमारे दर्शक है जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं जो पहली बार के लिए पॉलिटेक्निक्स के बारे में सुन रहे हैं या जान रहे हैं हम चाहते हैं उनको आप थोड़ा सा बताएं कि किन किन फील्ड्स में जो है पॉलिटेक्निक्स जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है इन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं.
2: ठीक है. जो श्रोतागण के लिए नमस्कार. पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का निर्माण 2017 में हुआ था. हमने शुरू की थी एक बैच नर्सिंग से और आज पॉलिटेक्निक में 6 फील्ड ऑफ स्टडी है यानी कि क्लस्टर्स. पहला है वो नर्सिंग, आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंजीनियरिंग और कलिनरी आर्ट्स एंड कल्चर. तो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के मॉरिशस में पांच कैंपसेस है और दो है रोड्रिक्स में. तो हम एक ऐसे टिवेट इंस्टीट्यूशन है जो फोर्स करता है मिनिस्ट्री ऑफ टर्शियरी एजुकेशन. हमारे यहाँ वी प्रोवाइड कोर्सेज इन सर्टिफिकेट लेवल, डिप्लोमा लेवल और बीएससी लेवल पे. तो स्टूडेंट्स कैन एनरोल विथ ओनली फॉर्म 5 विथ पास, 3 क्रेडिट्स, 5 क्रेडिट्स एंड बियॉन्ड.
1: ओके, धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए. उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो पॉलिटेक्निक्स का जो मॉडल है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से किस तरह से अलग है, खासकर प्रैक्टिकल लर्निंग को लेकर और बाद में जॉब फील्ड में जब जाते हैं बच्चे तो उसकी तैयारियों को लेकर.
0: तो जैसे कि दृष्टि ने कहा, हम शिक्षा मंत्रालय के अधीन में पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं. तो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक मॉरिशस की सबसे खास बात है हमारे मॉडल, हमें शिक्षा मॉडल जो चार हिस्से में बंटता है. तो एक है प्रैक्टिस बेस्ड इमर्शन, दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पोर्टफोलियो एंड पीयर टू पीयर लर्निंग. ओके, तो प्रैक्टिस बेस्ड इमर्शन से शुरू करते हैं. इसका मतलब है कि विद्यार्थियों जो भी कक्षा में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो ना सिर्फ कक्षा में सीमित होते हैं बल्कि वो जब काम के क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर भी वो इन सब को लागू कर सकता है. जब हम प्रैक्टिस बेस के बारे में बोल रहे हैं तो इसमें इंडस्ट्री विजिट भी आते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, इंटर्नशिप आते हैं, शैडो प्रोग्राम आते हैं, प्लेसमेंट भी आते हैं.
1: ओके,
0: और दूसरा है हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. तो विद्यार्थी अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करती हैं, प्रेजेंटेशंस में काम करती हैं, असाइनमेंट्स में काम करती हैं. ये सब असाइनमेंट तो उन्होंने जो भी कुछ सीखा है वो असाइनमेंट के दौरान उसको भी प्रैक्टिकल रूप से लागू करती हैं. ओके, तो जब हम प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये ना सिर्फ यू नो रिटर्न प्रोजेक्ट होते हैं बल्कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं जो बहुत उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है.
1: यानी कि उनको ओवरऑल जो है तैयार किया जाता है.
0: Exactly.
1: मतलब कि हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को, इसे प्रैक्टिकलिटी में जो है उतारने के लिए भी बताया जाता है. और साथ ही में जब आप जॉब सेक्टर में किस तरह से एंटर होते हैं तो किस तरह से जो है आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इन सब पर भी आप जो है फोकस करते हैं. तो चलिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपको बताते हैं कि आज खासकर पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस की बात करें तो आज इनके दो क्लस्टर पर हम फोकस करेंगे, टूरिज्म और आईटी. और ये दोनों ही क्लस्टर जो है अभी के जॉब सेक्टर की हम बात करें तो बहुत ही इमर्जिंग है, बहुत ही इन डिमांड है और बहुत से यंगस्टर्स जो है इसकी ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं. तो उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे अगर हम टूरिज़्म के बारे में बात करें तो टूरिज़्म की बात आप बताइए कि टूरिज़्म से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स प्रोवाइड करता है.
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कोर्सेज के पहले कि जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो ना सिर्फ होटल्स की बात करते हैं बल्कि हमारे विद्यार्थियों वो अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं जैसे कि टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइन कंपनीज. तो हमारे यहाँ तो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्सेज भी हैं, टूर एंड ट्रैवल्स का कोर्सेज भी हैं, कलिनरी कोर्सेज भी हैं. तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स भी हैं जो लेजर एंड टूरिज़्म एंड लेजर के अंदर भी
1: आता है. बिल्कुल. तो चलिए टूरिज्म ही की बात करें तो उसके जो मेजर पिलर्स है मॉरिशियन इकोनॉमी में किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है और किस तरह से ये सेक्टर अपने आप में इतना लोगों को खासकर यंगस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है.

0: तो यहाँ पर देखा जाए तो टूरिज्म एक अपने आप ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं. यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को वो सिर्फ ना सिर्फ अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं बल्कि उन लोगों से बात करते हैं. बात करने के दौरान जो भी स्किल्स हैं वो सब डेवलप करती हैं और इससे हम और भी ज़्यादा पर्यटक को आकर्षित कर सकते हैं.
1: बिल्कुल हाँ. और कहीं ना कहीं मॉरिशस की बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर इसका काफ़ी समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, नई चीज़ें आ रही है. तो आई बिलीव जब आप इन सभी कोर्सेज के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चे भी नई चीज़ों को अपने जीवन में उतारते ताकि वह बेटर सर्विस जो है प्रोवाइड कर पाए. अब हम आते हैं दृष्टि जी आप पर, जो IT इस क्लस्टर के बारे में हमें जानकारी देंगे तो थोड़ा सा बताएं कि IT और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जब हम बात करते हैं तो कौन से कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस प्रोवाइड करता है.
2: तो IT क्लस्टर में हम प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेट इन IT. शुरू करते हैं सर्टिफिकेट इन IT. जो स्टूडेंट जिनके पास 3 क्रेडिट नहीं होते हैं वो एक 5 पास से प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं. फिर डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में हमारे यहाँ डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी है, डिप्लोमा इन इमर्जिंग टेक है, डिप्लोमा इन बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिजनेस कंप्यूटिंग और डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, अन्य डिप्लोमा है. और आगे हमारे भी BSc प्रोग्राम है. हमने 2025 में एक कोलैबोरेशन किया था किंगस्टन यूनिवर्सिटी के साथ. तो वी हैव अ फ्री टॉप अप जिनके बारे में बाद में विस्तार से करेंगे.
1: बिल्कुल. और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल शायद कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो IT से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन बनता जा रहा है यंग जनरेशन के लिए मॉरिशस में. तो इस पर थोड़ा सा आप बताएं.
2: जैसे आपने कहा IT अब वो एक अलग सा इंडस्ट्री नहीं रहा, वो हर इंडस्ट्री से जुड़े हैं. और जब IT के बारे में बताएंगे तो IT में इनोवेशन नहीं हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन सा हो रहा है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI. और IT हमारे यंगस्टर जैसे हम जानते हैं वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ुद को मॉरिशस अपने आप को एक फिनटेक हब में रिपोजिशन कर रहा है. तो आगे में उसका एक मार्केट डिमांड है. तो यंगस्टर्स उन IT फील्ड में रह सकते हैं और उनका ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है. है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है पर ज़्यादा होगा आगे में
1: आने वाले समय में. हाँ. बिल्कुल. और IT की अपने आप में जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे IT जुड़ा हुआ नहीं है. और वहीं पर टूरिज़्म की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं IT किसी न किसी रूप में शामिल हो ही जाता है. चलिए उर्वशी जी आपसे हम जानना चाहते हैं अगर हम टूरिज़्म इस क्लस्टर की बात करें तो कौन से प्रोग्राम और स्टडी पाथवेज है जो करंटली अभी अवेलेबल है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी क्लस्टर में मॉरिशस पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में.
0: तो जब शुरुआत करते हैं तो वो सर्टिफिकेट से शुरुआत करते हैं पर वहाँ ये सिर्फ एक शुरुआत है, वो वहाँ पर सीमित नहीं होते हैं. तो सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा कर सकते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे डिप्लोमा हैं जो ट्रैवल टूर्स हैं, जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हैं, कलिनेरी का है, स्पोर्ट्स और लेजर का भी है. और इसके बाद ऑफकोर्स ये स्टूडेंट जो है वो एक टॉप अप डिग्री भी कर सकते हैं और बाद में अपने करियर में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं.
1: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि वक्त के साथ जो है डिमांड इतनी बढ़ते जा रही है कि ऐसा होता है कि एक समय एक स्टूडेंट अभी जैसे कि एक डिग्री करके किसी सेक्टर में एनरोल हुआ है, फिर मांग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उन्हें टॉपअप करने का भी ऑब्वियसली जो है ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे में हमने देखा है कि काफ़ी सारे कोर्सेज आप इससे रिलेटेड भी जो है प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों को आगे और जो है प्रोग्रेस करने में उनकी मदद करते हैं. चलिए टूरिज़्म से ही जुड़े रहते हैं. कहते हैं कि टूरिज़्म गोज फार बियॉन्ड वर्किंग इन होटल. इसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले बताया भी तो थोड़ा सा चाहेंगे कि विस्तार से इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें.
0: तो जब हम टूरिज़्म के बारे में बात करते हैं जैसे कि हमने कहा वो सिर्फ होटल पर ही सीमित नहीं होती
1: जी.
0: हम टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी इन सब में भी काम कर सकते हैं, एयरलाइन कंपनी में भी काम कर सकते हैं. इसके अलावा सरकारी या टूरिज़्म से जुड़े हुए कई ऑर्गेनाइजेशन

0: हैं हम वहाँ पर भी काम कर सकते हैं जी। पर पूरी टेक्निक मॉरिशस की सबसे खास बात यह है कि हमने बहुत सारे टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और होटल्स के साथ MOAs और MOU साइन किए, जिसके द्वारा हमारे बच्चे जो हैं, हमारे विद्यार्थियों, वो ना सिर्फ वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं बल्कि इंडस्ट्री विजिट वहाँ से सीख सकते हैं। यानी कि जो कुछ हमने सीखा है अपने लेक्चरर्स के द्वारा वो वहाँ भी सीख सकते हैं प्रैक्टिकल मोड।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कुछ हम अभी के समय में सीख रहे हैं उसको जो है इसमें लाना भी बहुत ज़रूरी है ना, प्रैक्टिस में लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस सेक्टर में कदम नहीं रखेंगे, वहाँ के एटमोसफियर को जो है महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपने जो सीखा है वो कहीं ना कहीं आपके काम नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन जब कम्युनिकेट करने की बारी आती है तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं। आने के लिए उन्हें सब कुछ आता है लेकिन लोगों के सामने जब अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है तब उन्हें मुश्किल होती है। और चलिए अब दृष्टि जी आपकी ओर हम बढ़ते हैं, IT इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपने तो ऑलरेडी हमें काफ़ी जानकारी दे ही दी है कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कुछ और आप इस पर जोड़ना चाहेंगे रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स जो पॉलिटेक्निक मॉरिशस प्रोवाइड करता है?
2: तो हमारे जो IT सेगमेंट में या डिफरेंट क्लस्टर्स जो पॉलिटेक्निक्स में अवेलेबल है वो एक केवल एक मार्केट डिमांड से जुड़ा नहीं है, वो इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द मार्केट डिमांड। तो जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, स्टूडेंट एनरोल इन दैट प्रोग्राम, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय से हम क्रॉस चेक करते हैं उन प्रोग्रामों का जो आस पर अगर एक इवोल्यूशन है, अगर the program need to be revised as per the market or as per technology or
1: ki jo demand hai
2: agar wo milta hai taki students are not only limited to theoretical part or practical part but also unhe yaha mehsoos karta hai ki jo program available hai wo unke sath ja raha hai, technology ke sath ja raha hai, jo रिवोल्यूशन मैंने पहले कहा था उनके साथ जा रहा है। तो हमारे मार्केट टाइम टू टाइम, हमारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होता है, हम क्रॉस चेक करते हैं कि इट इज़ बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स।
1: एग्जैक्टली, मतलब कि समय के साथ जो है ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, मांगे बढ़ते जा रही है, नए नए इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उस तरह से जो है आप अपने कोर्सेज को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। चलिए अभी के समय IT की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। AI की बात हम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, ऑटोमेशंस की बात करते हैं, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल जो है टर्म्स है या इसके बारे में जो जानकारी है किस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड करते हैं?
2: तो ऑलरेडी हमारे पास एक अन्य डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स। जो जो वर्ड्स है वो क्लिक हो गया है इन द सोसाइटी, इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आकर्षित हो रहे हैं इस प्रोग्राम के ओर। तो वो केवल एक बर्ज़वर्ड नहीं रहा है दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन इन आवर लास्ट बजट स्पीच IT को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी मार्ग पे हमने हमारे जो मैंने पहले मेंशन किया है, तो हमारे जो प्रोग्राम है वो अडॉप्ट हो रहा है इस टर्म से, इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से, ताकि स्टूडेंट्स को जब वो प्रोग्राम करते हैं तो उन टर्म से उनको ज़्यादा फैमिलियर होगा, बेनिफिट होगा। तो इसी मार्ग पे हमारे जो प्रोग्राम है वो टेलीमेड ऑलरेडी है। तो इसी हिसाब से हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो है बिजनेस इंटेलिजेंस विथ AI। तो हम इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है AI मार्ग में वो इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं।
1: ओके, और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी ये अपने आप में हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन इससे जुड़े काफ़ी थ्रेट्स भी होते हैं। इन पर भी लोगों को जो है जानकारियाँ हासिल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल इतने सारे जो है ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। तो आई बिलीव बच्चे जब इनको लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके जो है पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स, इन पर भी जो है जानकारी उनको होना

0: बहुत ज़रूरी होता है
1: जी केवल शो उनको उनके प्रोग्राम के द्वारा सर्टेन मॉड्यूल है सर्टेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट डेटा सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए और उनको प्रस्तुत करते हैं कि हाउ टू डील विद सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन तो उनको ये जानकारी पहले से ही प्रोवाइड करते हैं
2: बिल्कुल क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जो अचानक से सामने आ जाते हैं और कहीं बच्चा अभी एक जो है वर्किंग सेक्टर में एनरोल हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको ये सारी जानकारियां हो तो अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट भी कर सकता है और थ्रेट्स को मैनेज करना भी आसान हो जाता है
1: बिल्कुल
2: चलिए उर्वशी जी आपसे हम जानना चाहेंगे अगर हम टूरिज्म क्लस्टर की बात करें तो अभी के समय में जो है प्रैक्टिकल स्टडी को बहुत जो है जोर दिया जाता है इंडस्ट्री एक्सपोजर पर भी काफ़ी जो है दबाव दिया जाता है तो अगर जो भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़ते हैं पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से तो इन सभी जो है सेक्टर्स की जानकारी किस तरह से उन्हें दी जाती है किस तरह से उनको जो है गाइड किया जाता है
3: तो हमारे यहाँ ना सिर्फ जैसे हमने कहा ना सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर देते हैं बट प्रैक्टिकल पर भी जोर देते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम 50% जो है थियोरिटिकल नॉलेज पर जोर डालते हैं और 50% जो है प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल जैसे कि हमने कहा इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग इंडस्ट्री प्लेसमेंट ये सब इसमें आती हैं और इस तरह उसने जो भी पढ़ाई की है वो ना सिर्फ जानिए समझिए पर प्रैक्टिकल रूप में उसे लागू भी की करें
2: एक्जैक्टली और कहीं ना कहीं जब हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल ना क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी टूरिस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं कोई सर्विस या अपना कोई जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेल अडेप्टेबल टू ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन सिनेरियोज या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं जब आप उस सेक्टर में जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं तब जाकर आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाते हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और आज पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के दिए जाने वाले कोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर आज हमारा जो फोकस है वो है आईटी और टूरिज्म पर अभी के लिए एक छोटे से गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं

0: आज की चर्चा इस प्रोग्राम से आप सभी जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा अपने आप में एक नींव है जहां पर हम अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं और अच्छी शिक्षा अच्छा ज्ञान हर एक व्यक्ति को बहुत दूर तक ले जाता है और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस इसमें अपना बहुत योगदान दे रहा है। 2017 से शुरुआत हुई थी सिर्फ नर्सिंग से और आज कितने सारे कोर्सेज जो है अलग अलग फील्ड में ये देते हैं और समय के साथ इनकी जो मांगे हैं वो बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से आज के हमारे जो दो रिप्रेजेंटेटिव है दृष्टि जी और उर्वशी जी जो बता रही है कि मार्केट डिमांड के हिसाब से किस तरह से आप अपने कोर्सेज को अपग्रेड करते रहते हैं, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जब एक बच्चा आपके पास एनरोलमेंट के लिए आता है तो किस तरह से जो आप देखते हैं उनमें जो एक्साइटमेंट होती है ना, कि ऐसा कभी कभार होता है कि कुछ बच्चे माता पिता के प्रेशर में आकर किसी कोर्स के लिए जो है अप्लाई करते हैं, कभी कभार वो बच्चा अपने शौक से आता है, तो आप क्या अभी भी इस बात को देखते हैं कि बच्चे माता पिता से प्रेशराइज होकर कोई कोर्स कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, हमारे यहाँ जो पहले मेंशन किया है हमारे जो छात्र आते हैं वो स्टार्ट विथ फॉर्म फाइव विथ पास, फिर और फॉर्म फाइव विथ फ्री क्रेडिट्स और फाइव क्रेडिट्स। तो जो छात्र है जो फॉर्म फाइव विथ

0: Form 5 with only pass or 3 credit. तो we get to see that some उनके माँ बाप उनको दबाव करते हैं थोड़े से कि इस मार्ग में चले उस मार्ग में चले. जब हम प्रश्न पूछते हैं छात्रों से को एनी वन कैन डू एनी प्रोग्राम राइट, जो उनको अगर उनको उनके पास एंट्री जो रिक्वायर्ड है एंट्री रिक्वायरमेंट में हाँ वो कर सकते हैं. लेकिन हम पहले पूछते हैं छात्रों से किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है, और आगे वो उस एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं थ्रू आउट डिप्लोमा और बीएससी. तो हम देखते हैं कि हाँ एक थोड़ा सा है जो
1: माता पिता का
0: प्रेशर है, लेकिन उसे विनती करते हैं कि छात्रों को हाँ वी कैन encourage उनको their child to do the program, but उनको प्रोत्साहन भी करें कि जो उनके दिलचस्प है उस प्रोग्राम में वो आगे करें.
1: बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि माता पिता जो है बच्चों का भला ही चाहते हैं, obviously no doubt about it, वो चाहते हैं कि बच्चे एक ऐसे फील्ड में जाए या एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके पढ़े जो आने वाले समय में उसके लिए जो है प्रॉफिटेबल हो, उसे आगे बढ़ने का मौका मिले. लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे की दिलचस्पी उस क्षेत्र में नहीं है, उस सब्जेक्ट में नहीं है, तो फिर बच्चे के लिए भी कोप करना बहुत मुश्किल होता है. तो कहीं ना कहीं आई बिलीव पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा एग्जैक्टली क्या चाहता है, और अगर माता पिता को लगता है कि वो ठीक नहीं, तो आपस में कम्युनिकेट करके जो है इसे रिजॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब आते हैं हम कोर्सेज पर, आईटी से रिलेटेड कोर्सेज की अगर हम बात करें दृष्टि जी, तो जो भी बच्चे आईटी के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो क्या उन्हें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कोडिंग हो गया या एडवांस कंप्यूटिंग हो गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि जब सब्जेक्ट्स चूज करने की बारी आती है तो कंप्यूटर को नहीं चूज करते हैं, और फिर बाद में जब एचएससी पूरा कर लेते हैं या फॉर्म 5 पूरा कर लेते हैं तब सोचते हैं कि नहीं मुझे शायद बदलना चाहिए. तो क्या ऐसे बच्चे भी जुड़ सकते हैं आपके कोर्सेज से?
0: बिल्कुल, जो जो छात्र जो उन्होंने आईटी या कोडिंग नहीं किया है, अगर उनके पास एक नॉलेज है तो वो एक एडवांटेज है.
1: ओके,
0: बिल्कुल. और जो हमारे यहाँ हम हमारे सर्टिफिकेट लेवल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक मॉड्यूल जो कंपलसरी है, जो वहाँ पर वो स्टूडेंट वो छात्र बेसिक के मध्य से प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, टू गेट देम फैमिलियर विद. जब वो डिप्लोमा में जाते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ में होता है, तो छात्र बिकम दे गेट एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग एंड द कोडिंग. पर जब हम आज के बारे में बात करें तो वो प्रोग्रामिंग और कोडिंग इट इज़ नॉट अ चैलेंज, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा AI टूल अवेलेबल है जो खुद कोडिंग भी करता है और कोडिंग को आसान बनाते हैं. तो इट इज़ नॉट रियली अ चैलेंज. छात्र जो सीखना चाहता है वो जल्दी सीख सकते हैं.
1: आजकल के बच्चे ऐसा है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, खासकर आईटी से रिलेटेड बात करें. चलिए अब अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें जो ग्रेजुएट्स के लिए है, जो आईटी के फील्ड से जुड़े हुए, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से जुड़े, तो किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलते हैं?
0: तो आईटी वो हर इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इज़ नॉट लिमिटेड ओनली, सीमित नहीं है केवल आईटी इंडस्ट्री से. तो जो स्टूडेंट ने हमारे डिप्लोमा किया है वो आज इंटरनेशनल not international but I will say multinational companies जो locally based है उनमें job कर रहा है. इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, इंजीनियरिंग, क्योंकि आईटी जुड़ा है उस इंडस्ट्री से. और फिर है आते हैं जो हमारे छात्र जो उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो उनके शिक्षा से जो एक्सपीरियंस नॉलेज मिला है वो खुद एक फ्रीलांस बन रहे हैं. okay. वो बन चुके हैं एक फ्रीलांस. तो वो एक स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहा है को खुद एक स्टार्टअप करे.
1: ओके,
0: हाँ
1: ओके, यानी कि आपके कोर्सेज के बाद बच्चा जरूरी नहीं है कि किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में ही जाए, अगर वो अपना ही कुछ सेटअप करना चाहता है, आजकल तो स्टार्टअप्स काफी ट्रेंड में है, या अपना ही कोई छोटा

0: बिजनेस करना चाहता है तो आपके कोर्सेज को पूरा करके वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक बेस जो है बना ही सकता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए जॉब ही से जुड़े रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज से ही। साइबर सिक्योरिटी और एआई की बात करें तो अपने आप में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी काफ़ी डिमांड्स है। तो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए जॉब चैलेंजेस के लिए तैयार करता है?
1: तो फॉर आईटी इन द क्लस्टर ऑफ आईटी, या मैं कहूँगी हमारे पॉलिटेक्निक्स में जैसे उर्वशी ने पहले मेंशन किया है, हम अपने छात्रों को ऐसे प्रिपेयर करते हैं जो उन्हें चार सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा या ज़रूरी है वो चार सीढ़ी से क्रॉस करने के लिए। तो पहला है जो उर्वशी ने मेंशन किया है आगे, वो है नॉलेज बेस, जो क्लास में जो सीखते हैं। सेकंडली जो पीयर टू पीयर अपने दोस्तों से सीखते हैं, और तीसरा है जो सिमुलेशन, जो स्टूडेंट ने क्लास या क्लास में सीखा उनको सिमुलेट करते हैं हमारे स्किल्स लैब में। आईटी में स्किल्स लैब अप टू डेट टू द टेक्नोलॉजी, मैं मेंशन करूँगी हमारे स्किल्स लैब को, रोबोटिक लैब्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकबुक लैब्स, स्टूडियो है। तो वो अपने नॉलेज को प्रैक्टिस या सिमुलेट करते हैं, और हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री पार्टनर मार्केट से आते हैं और क्लास इंटरवेंशन भी करते हैं उस समय। तो उनको ये जानकारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलता है। और आखिरी मार्ग में जो वो प्लेसमेंट में भी जाते हैं टू गेट द रियल टच ऑफ वर्क लाइफ,
0: जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: वो पहले से उनको ये दृश्य मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और बाद में जो उन्होंने छात्र जो उन्होंने क्लास में सीखा है, एक्सपीरियंस मिला है प्लेसमेंट में, तो वो एक प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कहते हैं कैपस्टोन शोकेस। तो वो अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते हैं विद अ मिक्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड अकेडेमिक जर्नी जो उन्होंने सीखा है। तो इससे वो स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंट करते हैं, दे शो देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर नॉलेज स्किल्स एंड ऑल्सो देयर प्रैक्टिकल स्किल्स, तो ऑल कम्बाइंड वो प्रस्तुत करता है। तो इस मार्ग से हमारे स्टूडेंट्स पहले से ही वो एम्प्लॉयबल है, दे डोंट प्रायर एंडिंग देयर प्रोग्राम दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयबल। तो ये हमारे सक्सेस स्टोरीज है, हमारे हाईलाइट्स है कि हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयबल है इवन विदाउट एंडिंग देयर प्रोग्राम।
0: ओके, थैंक यू सो मच दृष्टि जी। उर्वशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे टूरिज्म क्लस्टर की बात करें तो टूरिज्म जो है मॉरिशस के अपने आप में एक बहुत बड़े पिलर्स है इकोनॉमी की बात करें तो, और अभी तक जो है मतलब के समय के साथ इसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यंग लोग जब पढ़ाई के बारे में सोचते हैं या किसी फील्ड में नौकरी के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है टूरिज़्म की ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं, तो आप बताएंगे थोड़ा सा इस पर?
2: तो अगर टूरिज़्म मॉरिशस के लिए टूरिज़्म के बारे में बात करें तो टूरिज़्म वो एक बड़े ही इनकम जनरेटेड सेक्टर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे काम मिलते हैं, ना सिर्फ होटल्स में बल्कि अपने खुद के बिजनेस भी खोल सकते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हैं, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन, ये सब जो हैं वो टूरिज़्म से जुड़े रहते हैं। तो ये युवकों को इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वहाँ पर वो नए कल्चर्स को सीख सकते हैं, नए लोगों से बात कर सकते हैं, और उससे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑपरेशंस के कोर्सेज हैं, वी हैव टूरिज्म ट्रैवल एंड टूर कोर्सेज, वी हैव कल्नेरी आर्ट जो रेस्टोरेशन में जाना चाहते हैं, वी ऑल्सो हैव इवेंट्स ऑपरेशन, सो जो लोग इवेंट्स में
0: मैनेजमेंट वगैरह,
2: लेजर रिक्रिएशन इवेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं वो उन सेक्टर्स में जा सकते हैं। विजिटर अट्रैक्शन, यहाँ हमारे यहाँ हम एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, हमारे यहाँ बहुत सारी टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं, वहाँ भी स्टूडेंट काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, टूरिज़्म की बात करें तो समय के साथ टूरिज़्म काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बहुत सारे लोग घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं, लेजर टाइम पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ जो ट्रैवलर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जा रही है ना। चैलेंजिंग तो है ही, जितने बदलाव आ रहे हैं लोग नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन नए चैलेंजेस

0: को, फिर चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, एआई सस्टेनेबिलिटी हो, किस तरह से आप अपने एजुकेशन में इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं?
1: तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है।
0: यस,
1: इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी पढ़ाई भी इंडस्ट्री के साथ साथ बदले। तो आज के ज़माने में डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमारी एक डिप्लोमा है, एक उदाहरण के तौर पर टूरिज़म स्ट्रैटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पर विद्यार्थियों ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखते हैं, बल्कि AI कैसे यूज करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में, एंटरप्रेन्योरशिप में। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी ये टूरिज्म के बहुत बड़े हिस्सा हैं, पर ना सिर्फ टूरिज्म पर, आम लोगों के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति की रक्षा कैसे करें,
0: बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ, और उससे भी कि हम स्थानीय लोगों को टूरिज़्म के विकास में कैसे शामिल करें, उनका भी महत्वपूर्ण होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली। और सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, आजकल हर एक सेक्टर जो है इस पर काफ़ी जो है जोर दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम देख रहे हैं कि कितने नेचुरल कैलामिटीज़ आ रहे हैं जिस पर हमारा जोर बस नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोगों को जागरूक करना पढ़ाई के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए उर्वशी जी, आप ही से हम जानना चाहेंगे, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें इन द टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो अभी के समय में बियॉन्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन और किस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है?
1: तो हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आजकल एम्प्लॉयज़ ना सिर्फ क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल्स देखते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि आप अलग अलग परिस्थितियों में कैसे, आपका व्यवहार कैसे है, बातचीत का तरीका कैसे है, बातचीत की कला भी, ये भी कला है। मिलजुल कर आप काम कैसे कर सकते हैं, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, जो बहुत ही आवश्यक है। समस्याओं का हल कैसे निकाला जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने ही वर्कर्स के साथ, अपने ही बॉस के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब
0: टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी होता है।
1: ये बहुत ही आवश्यक है। और देखा जाए तो टूरिज़्म में हम ज़्यादातर लोगों से काम करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो यहाँ हम कस्टमर सर्विस पर बहुत ज़्यादा
0: फोकस करते हैं।
1: तो इसीलिए ना सिर्फ कस्टमरों के सामने अच्छी तरह से पेश आना, बल्कि उनकी संस्कृति को समझना, उनका मान करना, तो रिस्पेक्ट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे लोग विदेश से आते हैं, जो एक अलग संस्कृति का हिस्सा होते हैं, अलग कल्चर में पले बड़े होते हैं। जब आपके देश में आते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं, हमें भी उनके प्रति ये रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए। और इसलिए कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सिर्फ हमारे रिश्ते में ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में आज कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है फाउंडेशन है, एक पिलर है। और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे उर्वशी जी, जो सर्टिफिकेट लेवल पर शुरुआत करते हैं, आगे चलकर किस तरह के अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलते हैं टूरिज्म के सेक्टर में?
1: तो ये सर्टिफिकेट लेवल वो सिर्फ एक शुरुआत है, एक एंट्री रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो विद्यार्थी जो हैं वो डिप्लोमा तक जा सकते हैं। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बाद एक डिप्लोमा लेवल 5 है, डिप्लोमा लेवल 6, और फिर जाते हैं टॉप अप डिग्री तक। ओके, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एंड लेजर के बारे में बात करते हैं, जो टूरिज्म में भी है, टूरिज्म में इंक्लूडेड है। हम हायर सर्टिफिकेट से शुरू करते हैं, एडवांस सर्टिफिकेट तक जाते हैं, और हम बैचलर तक जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी विद्यार्थियों के लिए।
0: चलिए, अभी तो जहाँ तक हमें आपसे बात करते करते पता चला, अभी करंटली आपके यहाँ एनरोलमेंट चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि दोनों क्लस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, जो भी लोग सुन रहे हैं अगर आकर आपसे मिलना चाहते हैं तो कहाँ पर आकर मिल सकते हैं, और इन सब, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है।
2: तो करेंटली वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स, वी आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट फॉर आवर सेप्टेम्बर इनटेक। जो आप हमें मिल सकते हैं इन एनी कैंपस, वो है पॉम्पलेमूस, एवेन, रेजुई, मोंटाई ब्लांश, इवन रोजबेल और यू कैन कॉल अस ऑनलाइन ऑन लैंडलाइन वो है इस नंबर पे 4605100 तो और आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट में जो हमारे प्रोग्राम अवेलेबल ऑलरेडी है तो आप तो पेरेंट्स या विद्यार्थी उन पे

0: चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर उन्हें कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं। हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन है जो अवेलेबल है, जो उनको असिस्टेंस देगा, और हमारे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बीएससी उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
1: चलिए इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है शायद और एक एपिसोड हमें चाहिए होगा। ओके, जल्दी जल्दी अगर उर्वशी जी कुछ जोड़ना चाहती हैं।
2: मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि को समझना चाहिए, पहले अपनी रुचि को समझिए, फिर जानकारी लें हमारी प्रोग्राम्स में, हमारी वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर डिटेल्स हैं, हमें फ़ोन कीजिए, हमारे कैंपसेस में आइए, वो कोई ना कोई स्टाफ आपकी मदद
1: जरूर करेगा। चलिए आज के लिए आप दोनों जुड़ी और पॉलिटेक्निक मॉरिशस से रिलेटेड इतनी सारी जानकारियाँ दी, खासकर दो क्लस्टर्स पर आज हमने बात की, आईटी और टूरिज्म, ये अपने आप में एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस दृष्टि जी आपको और मिस उर्वशी जी आप दोनों का, और साथ ही पॉलिटेक्निक्स को भी हम धन्यवाद देंगे आपके सहयोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते टेक्निक पर हमें सहयोग मिला अपर्णा और उरुषा का, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हमारी आपकी भेंट फिर होगी, तो नमस्कार आप सभी को, हमारी ओर से शुभ दिन।

0: के सितारे।
1: मंगलवार 8 सितंबर आपके सितारे इस प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। तो चलिए जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ट्यूज़डे का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा आप सभी के लिए। और आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जो आज तो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजते रहती हैं। आज का हमारा आपके सितारे प्रोग्राम विल बी ऑन आशा भोसले जी। 8 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था और इसी साल 12 अप्रैल 2026 को वो चल बसी थी। ऐसे आशा भोसले जी अपने आप में इतनी बड़ी कलाकार है कि उनके बारे में हम क्या कहें। तो चलिए इस दो घंटे के सफ़र में उनसे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें हम करेंगे, उनके गाए हुए खूबसूरत गाने आपके लिए हम चलाएंगे। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शानदार शुरुआत हम करते हैं।

0: के सितारे।
1: दोस्तों आज का हमारा जो आपके सितारे प्रोग्राम है वो आशा भोसले जी पर है। ऐसे आशा भोसले जी ने 15,000 से 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज़ में जो वर्सिटैलिटी है उसके बारे में हम क्या ही कहें। हिंदी के साथ साथ उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेज़ी और रशियन भाषा में भी गाने गाए हैं। ऐसे ये गानों की बड़ी ही शौकीन रही है, गायकी की बड़ी ही शौकीन रही है। और ऑब्वियसली लता जी इनकी बड़ी बहन है और लता जी भी गायकी के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुकी है और आशा जी भी जो है अपने बहन के नक्शे कदम पर चलकर गायकी में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को इस अगले गाने के साथ हम आगे ले जाते हैं।

0: आपके सितारे।
1: तो दोस्तों आशा जी की बात करें तो इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर्ड फिल्मों का दौर तय किया है। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर्ड फिल्मों का दौर जो है इन्होंने तय किया है। और आशा जी के गाए हुए गाने इतने लाजवाब है कि आज भी हम इन्हें सुनते हैं। ऐसे जब इन्होंने गायकी के क्षेत्र में कदम रखा था तब ऑलरेडी काफ़ी दिग्गज गायिकाएँ थे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके थे, जैसे कि गीता दत्त, शमशाद बेगम जी और इनकी अपनी बहन लता मंगेशकर जी। और इतने मशहूर सिंगर के बीच में अपनी एक पहचान बनाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। 50 के दशक में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और अपने अंतिम समय तक ये गायकी से जुड़ी रही। और उस दौर मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट के दौर के समय के कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, गायकों के साथ गाना गाते गाते नए दौर के कंपोजर्स और गायकों के साथ भी इन्होंने गाना गाया है।

0: के सितारे।
1: तो दोस्तों आशा जी के बारे में जितनी बातें कहे उतनी कम है। आशा जी जो है गायकी के क्षेत्र में इन्होंने जो है शुरुआती दौर की बात करें और कुछ नई फिल्मों की बात करें तो 1957 की नया दौर, फिर 1966 की तीसरी मंजिल, फिर 1981 में आई उमराओ जान, 1995 में आई फिल्म रंगीला, ऐसी फिल्मों से इन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं कि आज भी इन गानों को हम सुनना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं इनके अलावा कई ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए इन्होंने गाने गाए हैं और अपने टाइम के मशहूर जो है कंपोजर्स के साथ इन्होंने गाने गाए हैं। ओपी नैयर जी के लिए इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं, फिर खयाम जी के लिए भी, सचिन देव बर्मन जी के लिए भी, राहुल देव बर्मन जी के लिए भी, जयदेव, शंकर जय किशन, अनु मलिक, और अभी के यानी के कंपोजर्स की बात करें तो अनु मलिक जी, ए आर रहमान जी और अन्य बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ इन्होंने काम किया है।

वहीं शिकार इस फिल्म के लिए जो 1969 में आई थी, पर्दे में रहने दो, इसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था। कारवा इस फिल्म के लिए, पिया तू अब तो आजा इस गाने के लिए भी ये अवार्ड ले गई थी। और वहीं पर हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म के, इस गाने को कौन भूल सकता है, दम मारो दम, इसके गाने भी, इस फिल्म के इस गाने के लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था। वहीं पर नैना इस फिल्म के लिए होने लगी है रात, और वहीं पर और कई अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। उसी बीच डॉन जो फिल्म आई थी 1970s में, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, इस फिल्म के इस गाने को कैसे भूल सकते, इसके लिए भी ये अवार्ड ले गई है। तो चलिए कुछ और गाने हो जाए और फिर इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: के सितारे।
1: ऐसे आशा जी का ये जो सफ़र है वो इतना लंबा रहा है गायकी के क्षेत्र में कि क्या कहे। आशा जी ने सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं गाए हैं, प्राइवेट एल्बम का जब दौर आया था 90 के सालों में तो उस समय भी इन्होंने अलग अलग कंपोजर्स के साथ मिलकर काफ़ी अलग अलग शैली के गाने गाए हैं और हर शैली में इनकी आवाज़ अपने आप में इतनी उभर कर आई है कि क्या कहे। और अवार्ड्स की बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे तो दो फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, वहीं पर फिल्मफेयर की ओर से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला है और उसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है गायकी में अपने योगदान के लिए, और वहीं पर भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था और वहीं पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी इन्हें साल 2000 में नवाजा गया था।

0: के सितारे।
1: तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं। आपके सितारे ये प्रोग्राम जो आशा जी पर है, कुछ पुराने गाने, कुछ नए गाने, जो भी गाने यहाँ पर चल रहे हैं वो आशा जी की आवाज़ में हैं और बड़े ही प्यार से हमारे इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आशा जी का जो जीवन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है, काफ़ी संघर्षों का सामना करके वो उस मुकाम पर पहुँची जहाँ पर इन्होंने इतना नाम कमाया है। और कहते हैं ना कि कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी होती है, तो आशा जी का जो लाइफ है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल रहा है बहुत से कलाकारों के लिए। तो चलिए, आशा जी ऐसे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक कलाकार चला जाता है लेकिन उनकी कला हमेशा साथ रहती है। तो चलिए, गानों को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपके सितारे।
1: तो दोस्तों आशा जी पर आधारित आज का हमारा आपके सितारे जो प्रोग्राम रहा और आशा जी की बात करें तो इन्होंने सिर्फ हिंदी गाने ही नहीं गाए हैं बल्कि काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी इन्हें जो है कोलैबोरेट करने का मौका मिला और वहां पर भी इनके गानों को जो है बहुत बहुत पसंद किया गया। और आशा जी के अन्य बात करें तो ऐसे तो इन्होंने बहुत कम उम्र में पहली शादी की थी वहीं पर आरडी बर्मन के साथ। जब ये जुड़ी तो इनके करियर को एक अलग आयाम मिला, उनके साथ जुड़कर उन्होंने अलग तरह के शैली संगीत में जो है जुड़कर अच्छे अच्छे गाने हम सभी को दिए और ऐसे गाने हम आज भी पसंद करते हैं। तो चलिए आरडी बर्मन साहब और आशा जी की बात हुई तो ये गाना हो जाए।

0: तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो आपके सितारे प्रोग्राम है ये ख़त्म होने को चला। आप सभी ने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। दो घंटे के सफ़र को उम्मीद करते हैं आपने आज भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही हमारा साथ आप देते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। 8 सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मतलब कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनावल जाला। पढ़ला और लिखला सब कोई खातिर एगो बड़ा उपलब्धि है, लेकिन आज भी करोड़ों बड़ा आदमी और नौजवान लोग भी इस गुण और इस सुविधा से दूर हवन जा। 1967 से इंटरनेशनल लिटरेसी डे दुनिया भर में मनावल जाला, जनता के शिक्षा लिटरेसी के बारे में जागरूक करे खातिर, ये एहसास दिलावे खातिर कि साक्षरता यानी पढ़ला लिखला आत्मसम्मान और मानवाधिकार के दृष्टि से कितना जरूरी बा, और पढ़ाई लिखाई एगो शिक्षित और सस्टेनेबल समाज खातिर बहुत जरूरी बा। चाहे कितना प्रगति हो गल बा दुनिया में, लेकिन आज भी 773 मिलियन जना पढ़े लिखे नहीं जाने लंस इस दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 1.5 मिलियन किताब बा का इ आप जानत रल, और इ धरला 46 किलोमीटर के दूरी के फासला से की तय करे।

और एकर मकसद यही है कि सब कोई सकी इस सब किताब में से कम एगो के पढ़े। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर यूनेस्को के जो महानिदेशक हवन उ बोलन कि जहाँ आदमी लोग एगो ऐसन दुनिया कायम करे चाहत हवन जा जहाँ पर शांति रही, जहाँ पर प्रगति रही, हुआ पर पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी है। और ई दिन उ सब शिक्षित जना से मांग उ करत हवन कि उ लोग अपन सब संसाधन, अपन सब रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट, अपन निवेश दुगुना करियन जा ताकि हर एक जना के सकल जाए पढ़ावे और लिखावे। और ई खातिर डिजिटल शिक्षा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करे के भी सिखैला बहुत ज़रूरी बा। जैसे देखले आवत है जा हमनी के देश जोन की एगो छोटा टापू देश है जहाँ पर सबसे जस्ती दूसर देश से आप्रवासी लोग आके यहाँ पर बसल हवन जा। ऐसन आप्रवासी लोग जे लोग के शर्तबन मजदूर के तौर पर आनल गल, जे लोग के गुलाम बना के आनल कर रहल, इ लोग के शिक्षा पर बहुत जोर देवल गल। और आज देखा ये शिक्षा पर इतना बल देवल गल, हर सरकार जनता के शिक्षित करे पर बहुत जोर दिले बा, सब सुविधा दिले आल बा कि आज मॉरिशस के जोन साक्षरता दर बा वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा है। और ये मॉरिशस खातिर बहुत गर्व की बात है। और फिर वो सब व्यक्ति के चाहे हमने के बधाई देवे के जे लोग बैठका जैसन अनौपचारिक स्कूल के स्थापना कर लन जा यहाँ पर जनता के शिक्षित करे के हर एगो कौम, हर एगो समुदाय अपन सुविधा और अपन हिसाब से ई इनफॉर्मल स्कूल्स शुरू कर लन जा, चाहे वो पूर्वीय भाषा के पढ़ाई ही कहे नहीं रही और हुए से शुरू होके पढ़ाई फिर ई औपचारिक रूप जब लेलक तब सब कोई के ई बात के ज्ञान रहल, एहसास रहल कि चाहेला अपन घर के लड़का लोग के पढ़ावे लिखावे के। बल्कि प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदुयाल के ज़माना में जब एगो आंदोलन चलल रहल, जन आंदोलन, तो हुआ पर साक्षरता दर के ऊपर उठावे खातिर जनता सकी मतदान देवे, ई खातिर जनता के साक्षर बनावे खातिर बड़ा आदमी लोग के हस्ताक्षर करे के, सही करे के सिखावल गए। तो इतना ज़रूरी है साक्षरता। साक्षरता के बिना यहाँ पर मॉरिशस में वोट देवे के भी इजाज़त नहीं रहल। और वो सब व्यक्ति के बधाई जे लोग अपन हिसाब से मुफ्त शिक्षा, फ्री ट्यूशन देवे लंजा लड़का लोग के ताकि वो लोग सकियंजा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। ऐसा ढेर शिक्षक बा जे लोग निःशुल्क शिक्षा, फ्री ट्यूशन देवे लंजा। तो आज के दिन आप सब कोई के बहुत बहुत बधाई और उस सब बुज़ुर्ग लोग के भी बधाई जे लोग अधेर उम्र में भी शिक्षित होई के पूरा जतन करता वंजा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन लो, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। प्यालावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज श्रद्धा और प्रार्थना के साथ जारी है। हजारों श्रद्धालु सैंखवा स्थित उनके मकबरे तक पहुंच रहे हैं। इस वर्ष एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। फाइनेंशियल

साइंस कमीशन ने गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचाने के संदेह में अपने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। एफसीसी के महानिदेशक संजय दाउदागी ने कहा कि संस्था में गोपनीयता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिशों

में रंगमंच की नई संभावना और युवा पीढ़ी तक हिंदी को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने पर बल रहा। SSRN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड शुरू वार्ड का उद्घाटन। ये सुविधा रोगियों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के 25 घंटे तक लगातार फटने से कई क्षेत्रों में राख फैल गई। 5 बड़े हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।

सेवा करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियानुरु पेयालावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण, गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पेयालावाल को मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी जाना जाता है। पेयालावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज शुरू हुई, जबकि उनकी पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। ये केवल पैदल तय किए जाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। कोई अपनों के साथ तो कोई अकेले, और हर श्रद्धालु अपने विश्वास और अपनी कहानी के साथ सैकड़ों पहुंच रहा है। प्रार्थना, कला और मानवीय एकता के बीच ये तीर्थ यात्रा याद दिलाती है कि आस्था की सच्ची पहचान प्रेम और भाईचारे में है। और हर वर्ष 8 और 9 सितंबर को हजारों श्रद्धालु प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए सैकड़ों स्थित मकबरे तक पैदल पहुंचते हैं। इस वर्ष तीर्थ यात्रा का संदेश है एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण। गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचाने के संदेह में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का एक अधिकारी निलंबित। आज सुबह पत्रकारों से बातचीत में एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी ने कहा कि संस्था के भीतर गोपनीयता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कुछ जांच अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है।

0: कानून की किताबें अदालत की दलीलें और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकालत की दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में आज के कानून छात्र भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में इसी सवाल पर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बताया कि नई तकनीक के दौर में वकीलों की भूमिका और कानूनी पेशे का स्वरूप किस तरह बदलने वाला है। अनबेल वुल्बेया की रिपोर्ट पर सुनते हैं गीता सुनाराइन को।
1: न्याय संस्थागत सुधार और मॉरिशस तथा भारत के बीच संबंधों पर चर्चा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के साथ हुई शिष्टाचार मुलाकात के केंद्र में रही। अपनी पत्नी और मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त के साथ पहुंचे डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री के साथ न्याय व्यवस्था में हो रहे बदलाव, न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में तकनीक के इस्तेमाल और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की। इनमें मॉरिशस में चल रहा संवैधानिक सुधार भी शामिल है। मॉरिशस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन है जो संविधान के संचालन का अध्ययन करेगा। उसी तरह भारत ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन कायम किया जिससे संविधान में बदलाव के आधार रखे गए, सुधार के साथ संवैधानिक बदलाव किए जा सकते हैं और साथ में जजों और अदालती कार्रवाइयों के साथ भी, जैसे निजी जीवन का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
2: So these changes have come in as a result of judicial interpretation.
1: Dr. Dharanjay Chandrachur ne Rashtrapati Dharam Gokul aur Attorney General Vakil

0: केविन ग्लोवर से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की फैकल्टी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए एक खास मेहमान की मौजूदगी रही। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करने का मौका मिला। इस दौरान तेजी से बदलते कानूनी पेशे की वास्तविकताओं पर चर्चा हुई। भारत के पूर्व न्यायाधीश ने छात्रों के साथ सीधे संवाद को प्राथमिकता दी और अपने करियर की शुरुआत से जुड़े कुछ अनुभव भी साझा किए।
1: As a young lawyer, in my very first appearance, I was appearing in a trademark passing off case.
0: लेकिन पेशे की बारीकियों से आगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों को ये समझने की सलाह दी कि कानून कभी भी समाज से अलग होकर काम नहीं करता। इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में हो रहे बदलाव भी कानून को प्रभावित करते हैं और ये तय करते हैं कि कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभानी चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस सोच का महत्व और भी बढ़ गया है, लेकिन पूर्व चीफ जस्टिस के अनुसार AI को इंसान की जगह नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रचूड़ कहते हैं,
2: The one thing which artificial intelligence doesn't give us is the power of judgment.
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्याय करने की क्षमता नहीं होती। AI जरूर वकीलों के काम करने के तरीकों को बदल सकता है, लेकिन वो अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका की जगह नहीं ले सकता। वो अच्छे और बुरे के बीच फर्क नहीं कर सकता और हमारे समाज के हित के लिए उचित फैसला नहीं ले सकता।
2: Which is to distinguish between what is right and wrong and to arrive at just conclusions for the welfare of our societies.
3: It is not every day that students have the opportunity to interact directly with someone.
0: छात्रों के लिए ये मुलाकात कानून की किताबों और कानूनी प्रावधानों से आगे बढ़कर ये समझने का मौका रही कि भविष्य में उन्हें किन वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्लोए जिवाल कहती हैं,
4: Il nous a vraiment donné de bons conseils et sa perspective aussi par rapport au nouveau monde et avec l'implication de l'intelligence artificielle dans même le domaine légal et ses benefits, tout ce que ça peut nous apporter, mais aussi ses.
0: उन्होंने हमें अच्छी सलाह दी, AI के फायदों और नुकसान के प्रभावों के बारे में भी समझाया, जो कानूनी पेशे पर पड़ सकता है.
5: L'artificial intelligence énorme plusieurs informations, misinformation aussi.
0: युवराज लक्ष्मण कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत जानकारियां भी देता है। हमें नई पीढ़ी को इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। करीब 30 मिनट की ये मुलाकात छात्रों के लिए सिर्फ कानून का एक पाठ नहीं रही, बल्कि उस बदलाव पर विचार करने का अवसर भी बनी जिसका सामना आने वाले समय में इस पेशे को करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचने का मौका कि वे भविष्य में किस तरह के कानूनी पेशेवर बनना चाहते हैं।
6: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों की देखभाल की दिशा में एक नई पहल। कई वर्षों की कोशिश और आपसी सहयोग के बाद SSON अस्पताल में एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य रोगियों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर इलाज देना और उनके जीवन को आसान बनाना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी संगठन ने इसका स्वागत करते हुए सरकारी अस्पतालों में और अधिक विशेष उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। करुणा लालू।
7: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहे मरीजों की देखभाल के लिए एक नया चरण, मरीजों के लिए समर्पित नया वार्ड, कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और विभिन्न पक्षों के सहयोग का नतीजा है। इसका मकसद मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। सुदेश कुमार पाठू कहते हैं,
8: une fois qu'il y a un enfant qui est diagnostiqué avec la dystrophie musculaire, je canalise ces enfants-là vers nous, l'association. Et à partir de ça, nous prenons le suivi.
7: उत्तर क्षेत्र से परे स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दक्षिणी क्षेत्र में भी इसी तरह की सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य दक्षिण के मरीजों को खास चिकित्सा सेवाएं उनके घर के करीब उपलब्ध कराना है। मंत्री अनिल बिचू ने कहा,
9: pour garder quelques jours ou quelques semaines dans l'hôpital, il y a un problème pour mes parents. Alors nous pensons dans le site, soit à Rosebel ou à Suyac,

0: विजय फैनलो डिपार्टमेंट ची वार्ड लबा।
1: स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि दो नई एंजियोग्राफी मशीनें फ्लैक और जीटू अस्पतालों के लिए जल्द ही खरीदी जाएंगी। अस्पतालों में मौजूदा कई मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लगातार मरम्मत की आवश्यकता है।
0: Un de l'hôpital plus important des pays de la capitale, en Diop et en Panne là-bas, nous devons faire tous nos démarches. Cette semaine-là, nous sommes capables de réparer. Et quand nous réparer, nous espérons qu'il peut travailler un peu. Mais entre-temps, nous avons déjà fini de commencer à procéder pour prendre des angiomachines, un aflac et qu'un adjitou.
1: वहीं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ये असेसमेंट पैनल के कामकाज पर भी गौर करेगी।
0: La réforme de disability benefits, l'IPU, vise pour qu'il non seulement get l'élément médical de quelqu'un qui a un quelconque disability, mais il aussi vise pour get l'élément fonctionnel. Au sens, le medical guideline pour intégrer et modernise et réactualise un critère médical. Et clair là, nous pouvons aussi évaluer Ben Zivoun qui basise le 60%, mais en bas 60%.
1: सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के स्तर पर भी कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार संविधान में दिव्यांगता को भेदभाव से सुरक्षा के आधारों में शामिल करने के अपने वादे पर कायम है।
2: हिंदी भाषा रंगमंच और बदलती डिजिटल दुनिया के बीच के गहरे संबंधों पर आज फिनिक्स में एक विशेष मंथन हुआ। विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर रंगमंच भारतीय और आधुनिक दृष्टिकोण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। स्थानीय कलाकारों ने रंगमंच में आ रहे बदलावों और नई संभावनाओं पर विचार साझा किए, साथ ही नई पीढ़ी तक हिंदी को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया। अदिति अवतार।
3: एक कहानी सुनने आए हैं।
4: नाटक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख और प्रभावशाली माध्यम है, जिसने समय समय पर समाज, संस्कृति, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं को मंच पर जीवंत रूप प्रदान किया है। पारंपरिक रंगमंच से आरंभ हुई नाट्य कला ने बदलते तकनीकी परिवेश के साथ निरंतर नए रूप लिए हैं। इस कार्यशाला में स्थानीय कलाकारों को नाटक के विकासशील सफर पर विचार करने का मौका मिला।
5: पहले धरती सांस लेती थी।
6: पुराने के ज़माने में हम सेटिंग करते थे, जो प्रव्स बनाते थे वो हाथ से बनाते थे, कुछ घर के बना देते थे फिर रखते थे। पर आज एवोल्यूशन के साथ हम लेड स्क्रीन डालते हैं, डिफरेंट एआई का सहायता लेकर हम डिफरेंट सेटिंग बना सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं लाइट्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, अभी सब कुछ बदल गया है।
7: जो सोशल मीडिया जो कंटेंट बाहर में बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं सिर्फ। अब इससे हमें निकल कर वी नीड टू बिकम एक्टिव, हमें खुद क्रिएटर्स बनना है। लेकिन क्रिएटर्स बनने से पहले हमें वो क्षमता होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम खुद कंटेंट क्रिएट करें और लोगों तक पहुंचा सके। और इसके लिए ऐसे कार्यशाला, ऐसे वर्कशॉप बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक तो भाषा के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग के तौर पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी वाइज आधुनिक उपकरण किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से ये कंटेंट खासकर नौजवानों तक पहुंचा जाए।
8: दिव्य और सज्जनों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि विश्व हिंदी सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है।
4: नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डीन शांतनु बोस ने कहा कि डिजिटल युग ने नाटक की पारंपरिक संरचना को चुनौती देने के साथ साथ उसे ज्यादा सुलभ और संवादात्मक बनाया है।
9: थिएटर एक ऐसी विधा है, एक लाइव परफॉर्मेंस है, जहाँ पे मूल शर्त ही है कि दर्शक और अभिनेता साथ में फिजिकली उपस्थित रहे। तो ऐसे हमारे फॉर्म का तो एआई से कोई शंका नहीं है, पर एआई के कारण बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, जैसे हमें बहुत तुरंत कोई टेक्स्ट ढूंढना हो, कोई रिसर्च मटेरियल ढूंढना हो।
10: हिंदी का जो एक स्वरूप है, जो न केवल अतीत से जुड़ा है बल्कि वर्तमान से जुड़ा है, हम हिंदी के उस रूप को देख रहे हैं। बल्गारिया में क्योंकि भारतीय डायस्पोरा बहुत छोटा है, तो वहाँ पर बल्गारियन हिंदी पढ़ रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच में, या हम कहें तीनों

0: देशों के बीच में, चाहे वो भारत हो, मॉरिशस हो और बल्गारिया हो, इन तीनों के बीच में अलग अलग हिंदी है।
1: उद्घाटन समारोह में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में नई टेक्नोलॉजियों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया गया।
2: देखिए, हम लोग के सामने एक चुनौती है कि कैसे नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ा जाए, और इस जुड़ाव को बनाने के लिए हमें जिस तरह से हिंदी की पढ़ाई होती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है, और टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब से जो युवा पीढ़ी का जुड़ाव है, उस माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार के साधन हम अपना रहे हैं, और हमारी कोशिश यह है कि उन साधनों के साथ हम युवा पीढ़ी को हिंदी के प्रति आकर्षित करें। साथ साथ हिंदी को सरल और रोचक भी बनाना पड़ेगा, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हिंदी का पाठ्यक्रम जो हो, हिंदी के पढ़ाने के तकनीक जो हों, वो सरल हों, वो इस तरह के हों कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी हिंदी के प्रति जो रुचि है वो बढ़े।
1: शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को सरल व्याकरण और आसान भाषा के माध्यम से हिंदी पढ़ाए जाने पर उनकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी।
3: इस माध्यम से हिंदी को बच्चों की तरफ ले जाए, उन लोगों का रुचि हिंदी में कैसे हम ज्यादा इंटरेस्ट ला सके। We have to review the way Hindi is taught. अगर सरल भाषा में हिंदी को हमारे बच्चों के पास लाएं, वो उनको अपनाएंगे।
1: इस समारोह के दौरान एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया।
4: और हर वर्ष 8 और 9 सितंबर को हजारों श्रद्धालु प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए सैकड़ों स्थित मकबरे तक पैदल पहुंचते हैं। समाचार की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। इस वर्ष तीर्थ यात्रा का संदेश है, एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज का निर्माण। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष यातायात और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की गई है। हमारी सहयोगी याचना मिश्रा सैकड़ों में मौजूद है ताज़ा जानकारियों के साथ। नमस्कार याचना।
5: नमस्कार पूजा, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। जी हाँ, अभी हम सैकड़ों में खड़े हैं। मेरे ठीक सामने फैजलाबाद का मकबरा है, और पीछे यहाँ पर गिरजाघर है। और यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, इस वक्त बहुत तेज हवाएं बह रही हैं, हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन भीड़ भी है, लेकिन शांत माहौल भी यहाँ पर छाई हुई है। मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं शांत माहौल से, शांत मन लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसी श्रद्धा इसी आस्था के साथ, क्योंकि जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वे दूर होंगी। और यहाँ पर आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, जी हाँ, सुरक्षा काफी जोरदार है यहाँ पर, पुलिस की भारी मौजूदगी है, यहाँ पर कुछ समाज सेवक भी है, और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल पोस्ट लगाए गए हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो इस मेडिकल पोस्ट में जा रहे हैं जो मकबरे और गिरजाघर के बीचों बीच लग गया है। पुलिस की भारी मौजूदगी है, हमने मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जो दमकल कर्मी हैं वे भी वहाँ पर हैं। 4-5 एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं यहाँ पर सबकी सुरक्षा के लिए। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं शांत मन के साथ, शांत चित्त के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और फैजलाबाद मकबरे के पास जाकर फिर वहाँ से निकल के वो लोग गिरजाघर के अंदर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि गिरजाघर में यहाँ पर प्रार्थना सभा जो लगने वाली है वो रात 8 बजे शुरू होगी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो 6:30-7 बजे के बीच जो है, तब जाकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो लोग काम पर गए हुए थे, बच्चे जो लोग स्कूल कॉलेज गए हुए थे, वे अब घर पर जाकर फिर यहाँ तक की या तो पद यात्रा या फिर गाड़ियों में आ रहे हैं। अब गाड़ियों को लेकर हम बता रहे हैं, कोटवी से, जैसे मोका से जब हम लोग कोटवी की ओर आ रहे थे तो यहाँ पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या थी, लेकिन जैसे ही हम जो आले पेरावाल जिसको बोलते हैं, जो सड़क है जो यहाँ पर आती है, वहाँ पर जो ट्रैफिक

0: जाम इतनी ज्यादा नहीं थी, गाड़ियां जो है आराम से चल पा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी है और लोग यहां पर आ रहे हैं शांत मन से। और आपको बता दें कि कल 9 सितंबर को यहां पर लोगों की ज्यादा भीड़ आने का अनुमान है, क्योंकि जैसे कि हम आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कौसर लावाला का देहांत जो है वो 9 सितंबर को यहां पर हुआ था सन 1864 में, और वे 7 साल के थे और वे गरीबों के मसीहा कहलाते हैं जिन्होंने यहां पर मॉरिशनों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और उनकी भलाई के लिए यहां पर काम किया है।
1: धन्यवाद याचना इन सब जानकारियों के लिए। जैसे कि पेलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा आज शुरू हुई, ये केवल पैदल तय किए जाने वाले रास्ता तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है, और पेलावाल की पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी। विदेश में भारत की राजधानी नई दिल्ली में सत्यनिकेतन की 5 मंजिला पीजी इमारत ढहने के बाद छात्र आवासों की सुरक्षा जांच की जा रही है। हादसे में 7 लोगों की मौत। एक सप्ताह के भीतर पीजी के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारतों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय जाँच और इमारत नियमों के पालन पर फिर से गौर करने की घोषणा की है। और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भारत तक 2 बड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की राख से उड़ानें प्रभावित हुई हैं और लाखों यात्री फंस गए हैं।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू हैं। इस तरह हमारे इलाके पर ठंड हवाएं बह रही हैं और मस्कारिन के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है ऊंचाइयों पर। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से तथा मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:11 पर होगा।

0: 6:26 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजल को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

फ्लैक में, रॉय रोड बुलेगोर फ्लैक में 69 साल की 69 years old श्रीमती मुनेश्वरी देवी कुंजु बिहारी, श्रीमती मुनेश्वरी देवी कुंजु बिहारी, पैदाशी नाम रामयाल और जिन्हें लोग रजनी नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सपहर के तीन बजे इनके पति देव कुंजु बिहारी के मकान रॉय रोड बुलेगोर फ्लैक से उठाकर काउद मास्क की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कच्चे मिलते में 72 साल की 72 years old श्रीमती वीरामा चिदम्बरम, पैदाशी नाम कुंजमाले और जिन्हें लोग मिनीदा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे कंदन चिदम्बरम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस कच्चे मिलते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए में जिनका दिमाग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। रॉय रोड न्यू ग्रोव में 79 साल के 79 years old श्री उजागीर सिंह सकी सिंह जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले DWC में इंस्पेक्टर थे। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी बहन हरावंती सकी सिंह के मकान रॉय रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉय रोड ला फ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मंगा जिन्हें लोग ललन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉय रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून। गांधी रोड बुनमेया में 76 साल के 76 years old श्री अमृतलाल बिकाऊ जिन्हें लोग नारायण नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे रामनाथ सिंह बिकाऊ के मकान गांधी रोड बनमेया से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 12:30 PM। रिवालो रोड खैफकुआ में 81 years old श्रीमती धनवंती बुलडाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान रिवालो रोड खैफकुआ से उठाकर खैफकुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 3:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so. इस समय 6:32 हुए हैं और मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। कहते हैं सोच बदलो दुनिया बदलेगी। पुरानी सोच को ब्रेक देने का समय आया और नई सोच को सलाम करते हैं और इसी के साथ शुरू है प्रोग्राम नई सोच, आप सभी के लिए आप सभी के मनपसंद गानों के साथ।

0: ये जो मधुर आवाजें अभी आपने सुनी, आपको पता है ये किसकी थी? मुझे यकीन है आपको नहीं पता। ये आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। मन को छू लेने वाला ये गाना फिल्म सन्नाटा से लिया गया था। और अगला जो गीत चलेगा वो इस मौसम और मौसम के इस समय, इस वेले के साथ बहुत मेल खाता है। फिल्म आनंद से लिया गया गाना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। ऐसे ही गानों के साथ हम आपका साथ देने वाले हैं अभी से 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद अगले प्रोग्राम में हम आपका साथ जारी रखेंगे, और फिर 9 बजे तक चलेगा प्रोग्राम दिलों की आवाज़। फिलहाल सुनिए नई सोच।
1: नई सोच।

हमें उम्मीद है कि आज का ये दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरा है और शाम का समय है। आप में से बहुत लोग घर लौट आए होंगे और बहुत से लोग अभी खाना तैयार कर रहे होंगे। आप सभी को हम यही शुभकामना देंगे कि आपका जो भी कार्य चल रहा हो वो बहुत ही सफल हो, आपका खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बने और घर पर सभी आपके खाने की तारीफ करें। अगला गाना फिल्म फैशन से लिया गया, मर जावा।

0: इस समय 7 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और ये आखिरी गाना होगा इस प्रोग्राम नई सोच का। कहते हैं जो आपको आगे ले जाए वही है असली नई सोच, और हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक नई सोच से होती है। तो आज की शाम की शुरुआत यहीं से। अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ एक गाना, कुछ ऐसे गाने जिनको आज फिर से नए अंदाज में गाया जा रहा है और जिन्हें आज के नौजवान बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके जो ओरिजिनल जो मौलिक गाने हैं उनकी बात ही कुछ और है।
1: नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening, you are RM3.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: शाम के 7:03 हुए हैं और मैं किरण आपका साथ दे रही हूँ दिलों की आवाज प्रोग्राम में, जहाँ लव्स कम पड़ जाएं वहाँ दिल बोलता है। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दिलों की आवाज में। जो पहला गाना चलेगा वह दिल से निकली हुई अल्फाजे हैं नजिया हसन की आवाज में। ये दिल तेरे लिए है, ये जान तेरे लिए है, फिल्म स्टार से लिया गया बहुत ही मशहूर, बहुत ही हिट हुआ गाना।

दर्द हो या प्यार हो, हर जज्बात की होती है एक आवाज। सुनिए दिलों की आवाज। अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मन को छूने वाला गीत, फिल्म कर्ज से लिया गया। ये पुरानी फिल्म कर्ज की हम बात कर रहे हैं और गाना है दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने।

इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन और समय हुआ है 7:27। कहते हैं कुछ धड़कनों के पीछे एक कहानी होती है और कुछ ऐसी ही कहानियां आज हम इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं। अभी आपने अदनान सामी की आवाज में भीगी भीगी रातों में गाना सुना। अगला जो गाना चलेगा वो खास तौर पर फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी के लिए जो इस समय हमें सुन रही हैं, और अगला गाना होगा फिल्म क्रिमिनल से लिया गया तुम मिले दिल खिले, और फिर इसके बाद मीत मेरे मन के फिल्म से लिया गया एक गाना चलेगा। ये गाना खास तौर पर पॉम्पलमुस के सचिन के लिए।

अभी जो आवाज़ें आपने सुनी वो सलमा आगा और मनहर उदास की थी। और ये शो आपका है, ये बातें आपकी हैं और ये हैं दिलों की आवाज़। भागती हुई ज़िंदगी में रुक कर दिल की सुनते रहते हैं। और ये ऐसा ही वक्त आया है, चाहे आप कहीं भी हो, ड्राइव कर रहे हो, आराम कर रहे हो या फिर किचन में बिज़ी हो, लेकिन साथ में मीठे मीठे गानों का आनंद उठा रहे हो, तो ये प्रोग्राम आपका है दिलों की आवाज़। अगला जो गाना है वो सपने साजन के फिल्म से लिया गया, कभी भूला कभी याद किया।

इस वक्त आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़, और कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। आज उसी चुप्पी को आवाज़ दे रहे हैं। अभी आपने बप्पी लहरी की आवाज़ में प्यार चाहिए गाना सुना। अगला जो गीत चलेगा वो किशोर कुमार की आवाज़ में होगी। एवरग्रीन गाना फिल्म सागर से लिया गया। सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या।

जिंदगी की इस भागदौड़ में कब हमने अपने दिल की आवाज खो दी, आज उसी आवाज को फिर से ढूंढते हैं। मैं हूं किरण और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज, जहां पर हर एहसास को मिलती है एक नई पहचान।

0: अगला गाना फिल्म आशिकी से लिया गया, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

रात के ठीक 8:04 हुए हैं और अभी से 9 तक हमारा साथ रहेगा शाम का यह सुहाना वक्त और दिल की ये बातें। स्वागत है आपका दिलों की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: इस वक्त सुन रहे हैं आप दिलों की आवाज, और दिन भर की भागदौर के बाद ये वक्त आया है खुद से मिलने का, कुछ ऐसे गाने सुनने का जिससे कि आप अपने सारे थकान भूल जाएं और उस दुनिया में चले जाएं जहां सिर्फ आराम है, जहां सिर्फ दिलों की आवाज़ सुनाई देती है। अगला गाना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में, ना जाने क्यों मैं बेकरार, दिल में लिए दर्दे इंतज़ार, बैठा हूँ उस राह में जो तेरी मंजिल नहीं, जो मेरी मंजिल नहीं।

0: 8:23 हो चुके हैं। इस समय आप में से बहुत से लोग ऑफिस से घर आ गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बहुत से लोग गाड़ी चला रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपना रेडियो भी चलाते रहिए, हम हैं ना आपके साथ। अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, तुम बिन जाओ कहाँ। ये गाना ख़ास तौर पर निशा के लिए को मॉडल से, और इस वक्त हमें मैसेज भेज रही हैं कॉन्फुको से आंटी, और आप अपनी बेटी प्रिया के लिए अगला गाना चलवाना चाहती हैं। प्रिया जो कि कल मॉरिशस आ रही हैं विदेश से, और आपके लिए बप्पी लहरी का हम एक गाना ज़रूर चलाएंगे आंटी जी। फिलहाल सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, तुम बिन जाओ कहाँ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

गुजरे दिनों की बातें, आने वाले कल की उम्मीदें, सब कुछ इसी शाम में। ये शाम आपके नाम। इस वक्त हमें सुन रहे हैं दारेन, श्वेता, राविश, प्रिशा, लोविशा और आपाजू परिवार जो गोश्नुआ से हैं। साथ में पोर्टलुई से हमें इब्राहिम साहब सुन रहे हैं और पाई से हैं नंदा। और आप जो सिर्फ चुपचाप हमको सुन रहे हैं, ना कोई मैसेज ना कोई फ़ोन कॉल, ये गाना ख़ास तौर पर आपके नाम जसपिंदर नरुरा और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में, न जाने क्यों।

कभी गौर से मेरी आंखों में देखो, मेरी जान तुम्हारा ही चेहरा छुपाए। हमें उम्मीद है कि ढलती शाम के साथ साथ आपकी दिल की बातें भी पूरी हो रही हैं। आपका शाम सुंदर बनाने में हमारा भी शाम बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से कटता जा रहा है। अगला गाना ख़ास तौर पर बुआशेरी के धनी जी के नाम, ये उनका मनपसंद गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तेरी सांसों में कैसी खुशबू है, अब तो हमसे रहा भी ना जाए।

दिन भर की दौड़ और शाम का भी समय खत्म हुआ, अब दिलों को आराम दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे, फिर कभी इसी समय इसी चैनल पर, दिलों की आवाज़ पर। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: Continuous music. RM3.
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches.
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
4: रात के 9:06 होता है। तुसिनो तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्स और रेडियो मनोरंजन 94.95 मेगाहर्ट्ज़ पर सब संगतियों के हमने स्वागत करत है जा। और आज है मंगल रात सितंबर साल 2026। वो छूटर का कार्यक्रम प्रस्तुत अभी से लेकर रात के 11 बजे रे। और जो प्रताप सिंह धमिक से थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुर गीत सुने के नंबर वा घुमावा का जगह दे विद जगह विद सैंक। और मौसम तो बड़ी ठंडा करता, पानी बरसता, हवा झोंकों के साथ बहता। बस ऐसे मौसम में अपन रेडियो सेट कर करीब और हमने के साथ रात के 11 बजे रही। चलो शुरू कर जाए धमाकेदार प्रोग्राम के साथ, बहुत जोशीले गीत के साथ। मोहम्मद खालिद राजा बंधु गीत वगैरह वन थोड़ा जी ले। अब कैसे जिए के चेना, चल एक साथ सुनम जा।

भारा में जिसे देखा तो हवा हवा का लगभग आज शाम की 4 बज के आधा मॉरिशस ऋतु विज्ञान केंद्र के जो कम्युनिकी जारी कर गए अगर अनुसार मॉरिशस में ऊंचे लहरों की चेतावनी जारी बा और ये चेतावनी जारी रही बीफे 10 सितंबर के शाम के 4 बजे रही साथ में सक्रिय बादल को ठंडा हवा के साथ लहर के

0: साथ हमने के मौसम की प्रभावित करता है जो ठंडा हवा के लहर जब गुजर जाए हमने पर तेगु जोरदार एंटी साइक्लोन की प्रभाव परी जोन मस्कारीन आइलैंड्स के दक्षिण पश्चिम में बा तो कैसे हवादार मौसम रही और बरसाती मौसम सो मौसम जो है रात के और काल फजीर के गाँव गाँव पर मुटका पानी बरसी पूर्व में दक्षिण में और ऊंचे इलाकों में और मिनिमम टेम्परेचर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और 18 से 21 डिग्री सेल्सियस साहरी इलाका में और कल जो है कल दिन के दौरान जो है तापमान में गिरावट आई है 3 डिग्री से और हवा जो है दक्षिण पूर्व की ओर से बहता 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहूं कहूं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बही और जनता से मांग करा जाता कि समुंदर में न जाए के काहे कि समुंदर बड़ी खराब आ और 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठता और खासकर जब मागेवत रही तो ही सब जन बाघ भगवा और डोंजरे हो जाए और हमने की जन मछुआ 200 लोग से मांग करा जाता समुंदर में नहीं जाए के काहे कि ऊंचा ऊंचा लहरें उठी और समुंदर बड़ी खराब रही और बेशक सूर्यास्त सूर्योदय हुई काल फजीर के 6:11 पर और सूर्यास्त हुई सांझ के 6:02 पर तो मौसम जिसे बुलाता कि बरसाती रही हवादार मौसम रही और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आई कहे कि जोरदार एंटी साइक्लोन पर प्रभाव पड़ता तो बस ही ठंडा के मौसम में बस हनी बुलब सा गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया और हमके साथ दर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अभी रात के 11 ले और अगला गीत अनिल सिंह रमी सर अमृत अमन हिल गेले वन मिलजुल के जिए के अभी को संगत लाइन पे सुनब जा प्लीज़ अब टेलीफोन कर बता रेडियो के बोली वक्त कमती कर दिया वरना नहीं सकब से बताए हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: कल्याणी जी तो स्वागत बा
1: हाँ लापे उनसे अमिता का जन्मदिन
0: है हैप्पी बर्थडे
1: हाँ और फूलो
0: मिठाई
1: परिस्मा है मिठाई के ऊपर न है गीत मंगिया
0: कौन गीत बोला था वह
1: मिठाई के ऊपर में बाम मोमबत्ती
0: कौन सांते
1: मिठाई के ऊपर में बाम मोमबत्ती
0: मिठाई के ऊपर बा मोमबत्ती बेलेला बेलेला है कि तो
1: हाँ मिठाई के ऊपर बा मोमबत्ती 100 दिए भैया 104 दिए जीजी
0: आली चला दियो अब सगी तो और बहुत बहुत धन्यवाद उनकी टेलीफोन कर ला
1: आले
0: आली बहुत शुक्रिया इरल कल्याणी बहुत शेरी से तो हर गीत चलेगी तो आपकी बात कहेगी होगी तो अभी पैर का क्लासिक रंग दिले ही सर और पहला गाना मिलजुल के जी के है गीतवा चरावते ही से सब संगत यारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ा हूँ सर याद रहा कि है प्रोग्राम चलाता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी चलाता जहाँ तू सकत हमने की देखे और सुने भी तो है जो पहला गाना है बहुत बहुत प्यार के साथ चरावते ही सा ई सब संगत या के नाम जो हमने के संगे जुड़ल हवन जा आप हवन विमला रघुबर शरण केविन बाब्स मोहम्मद बिलाल दिनेश हरी एंजोलिनो देविन प्रभुदेवा हई गीचरी दया खातिर सबियाना सलमा अमीचान हजारीलाल हरिदेव देवराम लौल अनुष्का करीम गास्पा शिल्डो धर्मावती शीला राकेश मंजारो है गीत थोरो खातिर फिर सीरा कतन और फिर राकेश मंजारो उनके साथ देवथवन बेबी कॉल भीमकांड आशना एरो वाइब्स अजय गुप्ता शीला सुरजोनो अनसुया वीना वेंकटसमी दीपक हिना वसु जैनब येसन बी इलाही मेधा जांगटू रेणुका राजकुमार निर्मला साइन लुक्स वीर सिंह युस्नी आशीष मगर एलोइसा येष्णा सुमदु उषा प्रेयसी खुश क्लब मंजुला कावलेस नंदानी बिदेस जॉन मोहम्मद

Umeda, Narendra, Naz, Simsim, Munira, Mila, Karishma, Guru Samiroz, Maya, Bachu, Sahida, Rakwa Sakun, Sida Dindayal, Varsha, SSB, Sweety, Anushi, Eloisha, Dinesh Mato, Nazira Karim, Ravin, Jonas, Penal, Fir Haigit Chari, Shivnan Nandan, Kamal Thapa, Ansuya Ji, Elon Sehwan, Harmniki Sadiwaton, Hai Ansuya Haigit Tohar Khatir, Aap Elon Se Live Harmniki Sunatawan, Lucky Woman, Sharifa, Saras, Pooja, Kavita, Priscilla, Ansuya, Jennifer Radov, Isa Maula, Aruna, Aruna, Aruna Ugara, Roshan Sada Singh, Hello Roshan Bhai, Namaste, Tohar Swagat Bha, Saira Dahu, Agla Geet Abdul or Saira Banu Khatir, Angela Stha, Hageet Toro Naam, Bohut Bohut Pyaar Ke Saath, Aur Hageet Toa Hamni Chalawate Isa Khasam Khas, साइलेंट की ओर से अगर घरोली रानी और प्यारी सी बेटी परी और ये चली श्यामा जो नहरनविल में अशोक चेतन और रवि बंगारू खातिर जितना कोई अभी हमने किस नोटा रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई हमने टिकटॉक पेज पर दिखा था तह गीत लोग के नाम सच के हमने के सब कोई के चेहरा मिलजुल के जिएगी

गीता में सच के बोला कि जिंदगी में चाहे दोस्ती करे के मिलजुल के जिए के और मिलजुल के जीबा तो प्यार से जीव सा एकता से जीव सा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो कि नहीं। रात के 9:25 अगला गीत एगो हैप्पी बर्थडे वाला गीत है। तो गीत चली नदी वाला उनकी संगतिया के नाम वैनकूवर कनाडा से वन अनिता लाल जी और सब इटू परिवार और लालजी परिवार बहुत दरबे से अनिता वन फ्री कॉन्फ्लैक्स से क्या गीत हुआ तो के नाम चला वब्जा और है गीत चली खासम खास ये सब संगतिया लोग के नाम जिन हमने के साथ जुड़ल हवन जा हाँ। तो अगला गीत जिन चलावप सैरा दाहू की ओर से गीत चली अब्दुल सैरा बानू के नाम फिर जिब्रान आकाशदीप है गीत और खतेर नेहा जनीता फिर मंगल तारू तिरकपुन मगर योवना साबिना सेविया एंजल धनवंती लकी वुमन की ओर से गीत चली जयराज रानी अंती शंकुश स्नेहा और सब दुलाल दुला परिवार के नाम लालमाटी से नंदा हेलो नमस्ते सिल्वियो आली मिलियनेयर की ओर से गीत चली उकर महेंद्रानी बिहारी आप रन कोच में नीते हैं रोशन भाई हेलो जी नमस्ते प्रकाश कुमार नमस्ते जी हेलो विद्या जॉन मिशेल भी हमने के साथ देवतवन जॉन बातिस फिर नदानी जगरू गीत चली नदानी जगरू खतेर आप रन गुड लेंस मामजल जान अमानसी साथ देवतवन और बोलता प्रोग्राम एकदम चकाचक बा बहुत जोर जोरी गीत चलाता अच्छा लगा था। नेक्स्ट सॉन्ग अमानसी तोहर खातिर नर बहादुर गुरप्रीत सिंह और है गीत अच्छा दी खास हम खास अनिला तोहर नाम और रॉक गंगा राम और जितना स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग अभी रात के वक्त हमके सुनता बहुत बहुत प्यार से है अगला गीत तोहर नाम और जितना कोई के जन्मदिन बा हैप्पी बर्थडे ढेर माना प्यार और आशीर्वाद।

तेगी तो रहा जिता भी क्या जन्मदिन रहा लोलो खतेर और अब हमने तरह के सुनाओ जो कहानी साबिती और सत्यवान की कहानी बहुत पुरानी बात है। राजा अश्वपति की बेटी सावित्री बहुत सुंदर समझदार और धर्म परायण रहल। अब जब विवाह लायक भल तो राजा उनकर खातिर योग्य पर खोजे लगल और सावित्री जंगल में रहत हल को राजकुमार और राजकुमार सत्यवान के अपन जीवन साथी चुन ले रहल। सत्यवान बहुत नेक बहादुर और माता पिता के सेवा कर ले रहा युवक रहल। बाकी ऋषि मुनि बोले रहल कि सत्यवान के आयु बहुत कम बा और विवाह के एक दो साल बाद ओकर मृत्यु हो जाए ये एगो आकाशवाणी हो रहल। एकर बावजूद सावित्री सत्यवान से बहुत प्यार करे और वो निर्णय देलक कि वो सत्यवान से ही शादी करी। ये बात जनला के बाद सावित्री अपन फैसला नहीं बदललक और उनका विवाह सत्यवान से हो गए। विवाह के बाद

0: है सावित्री अपन सास ससुर के बहुत सेवा करे लगा अपन पति से बहुत प्यार करता है और एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटता है सावित्री भी उसका साथ गल जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हो और धराम से धरती पर गिर पड़ल और वो जो है सावित्री अपन गोदी में सत्यवान के सरदार के सुहावता और बोला था सत्यवान जाग जाग सत्यवान जाग तब यमदूत सत्यवान के प्राण ले ले आर बगर प्राण ले सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ल और यमराज होकर यमराज उनका बहुत समझेला कि वो वापस चला जाए कह के ऊकर प्राण लेके जाता और लेकर प्राण वापस ना करी पर सावित्री के बुद्धि धैर्य और पवित्रता धर्म से देख के यमराज बहुत प्रसन्न होलन और उस सावित्री के वरदान मांगे के बोललक पर वो बोलक कि वो नहीं सकी सत्यवान के प्राण दे ओकर बदले में वरदान मांगे के तो सावित्री पहला वरदान मांगलक अपन सास ससुर खातिर सुख सम्मान और दूसरा वरदान जो हो मांगलक कि ओकर ढेर मना संतान हो तो यमराज जो है बिना सोचे समझे बोल दिलक तथास्तु और जब तथास्तु बोल दिलक तो सावित्री को से पूछा तू तो वरदान दिलक कि हमारे ढेर मना लड़का हो तो हमारे पति नहीं रही तो लड़का कैसे होई ओ हो यमराज सावित्री के बुद्धिमानी समझ गल ओ प्रसन्न होके ओके पर सत्यवान के प्राण लौटाए कि सत्यवान फिर से जीवित होकर सावित्री अपन पति के साथ घर लौटाल और समय बीतल तो कर परिवार में ढेर मना लड़का होल और परिवार बड़ा बनल तो सत्यवान और सावित्री की कहानी किससे ई है कि सावित्री जो है सावित्री कहानी जो है सच्चा प्रेम धैर्य और बुद्धि मानी पति पत्नी के अटूट विश्वास के संदेश देवेला और एगो पत्नी चाहे तो अपन पति खातिर सब कुछ सकी करे अगर सच्चे दिल से को पत्नी अपन पत्नी से प्यार करी तो भगवान से भी अपन पति के प्राण सकी लौट आनी तो ज़रूर ये कहानी जो है सोशल मीडिया पर बा अगर फिल्म भी बनल बा और यूट्यूब पर भी बा सोशल मीडिया पर गूगल पर बदल जाइए और खोज जाए कहानी के सावित्री और सत्यवान अभी कहते चलब सुनब जाएगो जोड़ी गीत ओ बलमा और है गीतों के लेवन सुम्बावती दुमन बहुत बहुत प्यार के साथ और गीत आकाश चेतन खातिर राजेश श्री राम मास्टर सुरेश भाई और रॉक गंगाराम गीत चली सब रात्रि और टीम मेंबर्स खातिर अनमारी है गीत और नाम प्रकाश कुमार और है गीत चरावती सरिता खातिर साथ में गीत चली ललिता कुशल त्रियोले से चाचा आत्माराम भाई हरीश बोबासा से काला छोटी पोलॉजे से और अमृता गणेश हवन पीतों से और अभी सुरागनी हमने के इंतजार करा था ओकर से बच्चा राजा हेलो सुरागनी हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते कैसे समाचार
1: अच्छे अभी से 15 मिनट हो गल
0: हाँ तो अच्छा इंतजार करके ना बच्चा तरी सा बोला
1: हाँ जाना था
0: अरे बोला
1: बेटा के जन्मदिन रहल नियेस के जन्मदिन रहल
0: और बहुत बहुत बधाई तुहर बेटा के और रानी वैसे रहल
1: और है काल बा बेटी के रानी वैसे बेटी के 41 हो काल
0: चलो
1: पति विनय दुगो बेटी है वैष्णव बुचाली और हमारे बगल से हमारे दुगो बेटा गजन और गजन आशील पति अर्चना और हमारे सब नातिन नाती बेटा के लिका लोग और है सब आदिम परिवार सब बुजुर्ग परिवार आज परसों भी दुगो जन्मदिन बा नेवे के आज बहिन के लेजिस के तब लेजिस से तब होने भी
0: लालिस काफी लंबा बा कोई बात नहीं हमकी सुनने का जफी से ठीक बा
1: हाँ है क्या बोला सर ये स्वर्ण को गीत डालिए
0: कौन गीत है
1: जन्मदिन जन्मदिन के गीतवा होता डाल दिला
0: हाँ तो बोला स्वर्ण के कौन गीत
1: सुनानो यान के गो गीत डालिए
0: खाले पीले झीले भैया
1: नहीं हाउला

0: nouveau-là.
1: Bajabol.
0: Bajabol, d'ailleurs, oui.
1: C'est la radio.
0: Allez, ça veut être un de ce qui team que Sabiko.
1: Allez, à ma secrétaire, on nous le bol, là, le gosse, on a ta pierre, c'est.
0: Qu'est-ce?
1: À ma secrétaire, on nous le guide, man, là, le gosse, on a ta.
0: हेलो
2: हेलो प्रताप जी नमस्ते
1: नमस्ते शोभा जी कैसे हवा
2: हम अच्छा हैं तू कैसे हवा
1: हम ठीक हैं और तोहर आशीर्वाद से और अभी गणपति की तैयारी हुआ था
2: गाना मांगा था
1: हाँ बोला
2: हाय पूर्णिमा
1: फकीरा
2: एगो गीत डाल दिया कर अच्छी से है त्योहार प्रोग्राम में सब सुनने वाले के लिए त्योहार परिवार हमारा परिवार सब एमबीसी स्टाफ के लिए आप जितना कोई त्योहार प्रोग्राम खुशी रहेगा सुने के
1: आले बहुत धन्यवाद जमने की टेलीफोनी कर ला तो चले एक साथ अभी सुनो जो संभावती जुमन के गीतवा बलमा और बात चली पूर्णिमा फकीरा के राधा के शोभेरा तो मिस्त्री जमने के साथ देवतवन श्रीन राम जोन गीत हो रखा थी सबीना हेलो सबीना इनके टिकटॉक पर फॉलो करा था और चला एक साथ सुने और अरविश रेनू हिता भी इनके साथ देवत वन तो चला गीत सुनब जा संभावती जीवन की गाओ गीत बलमा ओ बलमा

बारमा हो बेदर्दी हमार देखते ही देखते रात के पौने दस बजे था तू सुनता भोजपुरी चरका प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन से एमबीसी स्टूडियो जो हम मौका में है वहां से ही प्रोग्राम चल रहा था संगत लोग आगामी मंगलवार 15 सितंबर के हमने मनावब से गणेश चतुर्थी के महापर्व उस दिन ग्वाम छुट्टी के दिन रही यानी कि पब्लिक हॉलीडे और उस दिन भगवान गणेश की पूजा करब से कर भजन कीर्तन गाओब से और के विसर्जन करब से और आजकल घर में मोदक बनाता तरह तरह की मिठाई बनाता गणेश भगवान के प्रसन्न करे खातिर तधेर गणेश के भक्तगण अभी रात के उनकी सुनता धेर कोई भी मूर्ति बनावा तो उनसे जरी जरी गणेश भगवान की जो जरी मूर्ति और एक सप्ताह लेकर पूजा हो घर में झाकड़ी हो भजन कीर्तन हो और मंगर के लेके सप्ताह के हाउस में के और पूजा पाठ करला के बाद ओके हमने विसर्जन करब सत जितना गणेश के भक्त लोग अभी रात के उनकी सुनता हमने गणेश गणपति पापा से प्रार्थना करी रस की तिलों की मनोकामना पूर्ण हो अभी जो व्रत धारण कर ले वैसे तो हर व्रत सफल हो चल एगो गणपति बापा के भजन चलाव दी सब गणेश भक्त लोग खाते जन सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन गणपति बापा मोरिया गणपति बापा मोरिया जय गणेश जय गणेश जय गणेश

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
5: पहले के जमाना में ढेर कोई गरीब रलन सा पर सब कोई खुश रहता। सब कोई तोल के घर में रहे, आदमी लोग खेत में काम करा थलन सा, फिर भी हर एक व्यक्ति के मुंह पर एगो प्यारी से मुस्कुराहट है। आजकल इंसान के पास हर तरह के सुख सुविधा बा, पर इंसान कोनो न कोनो बात के लेके दुखी बा, वो खुश नहीं बा। तो ये सब समय समय की बात है। आगे के आदमी में सबूरी रहल है, आगे के आदमी सबूरी करे, जितना रहल उतने में संतुष्ट रहत है। अभी के आदमी के जितना मिले लोग के बसवे नहीं होला। आज तोरा मिल जाए 10 लाख तक कल बुलबंग के और चहला, 20 लाख मिल जाए, 50 लाख मिल जाए, पर आज के इंसान के है कलयुग में जो इंसान है कि कौन चीज बस नहीं होला, ये खातिर हमने दुखी रही रह सका है कि हमने के और चहला और चहला और चहला। पहले के ज़माना में इतना घूमौता नहीं रही सर, इतना लालचित इंसान नहीं रह, थोड़े पैसा मिला तर पर आराम से जिया तरी सर। और आगे के ज़माना में एक परिवार में 9 गो 10 गो कहूँ पर 15 गो लड़का रहे, फिर भी सब कोई मिलजुल के अच्छी तरह प्यार से एक ही छत के नीचे रहता। आज एक गो लड़का बात थोड़ा तिरंगा नौकता बर-बर करेला सुलरिया जब बोलेला, बर-बर करेला सुलरिया जब बोलेला। संजय सिगुबिन सिगुलाम, संजय सिगुलाम है गीत गई रहे वन और एक गीत चलावत है सर स्वीट एंड लवली रिहाना हासिना जी के नाम। आप और फेनिक्स से और रिवर्स के उदय धनी राम किशन गुड़िया प्रीतम राज जुमिला केशव अभिलाक और सब बच्चन परिवार के नाम। और है गीत चली जितना कोई अभी रात के वक्त हमने सुना था बहुत बहुत प्यार से।

हमने के घर के लक्ष्मी हमने के माँ बेटी और पत्नी बहू है तो जिकर घर में माँ बहिन बेटी बहू के आदर सत्कार होला उ घर में माँ लक्ष्मी वास करेला और घर में संपत्ति संपत्ति धन हमेशा भरपूर रहेला तो हमेशा याद रखिया अगर तुहर घर में माँ बहिन बेटी बहू बा तो लोग के मान सम्मान करिया प्यार से बतिया और देखबो घर में हमेशा लक्ष्मी माँ वास करी और ऐसे में एगो गीत सुनब जाए नारी जन्म ले ले बेटी और है गीत चलावत ई सब संगति आलो खातिर आप हवन चाची प्रभावती नोवेल फ्रांस से रतन निहाल गॉम्बे से सत्यम सोनू शिव रतन परिवार कमला दिनू कच्ची जम्फारोही रीता के ओसो को बहिन रेणुका सबका कतिया परिवार हरकू परिवार चिराखन परिवार त्रियोले से और शास्त्री बनमाली खातिर गीत चलता सब कर परिवार संगतिया और शास्त्री बनमाली को सुपे हवन पनवान में कूस करे रन और जितना कोई के जाने रहा गीत लोगों खातिर नारी जन्म लेली बीती और सच्चे के नारी के जीवन जो है आसान नहीं आए अब देखा एगो नारी के कितना रोल रहेला कब वो शादी का लगता है वो पत्नी बन गल अब कोई के बेटी है वो है अब बेटी से पत्नी बनल पत्नी से माँ बनल माँ से दादी बनल है बहू बनल चाची बनल नानी बनल मौसी बनल तो एगो नारी के ढेर भूमिका है घर में नारी काम करेला घर के बाहर भी काम करेला और समाज में ऊँचा स्थान पाला

निवेस्ते जाला ते नारी में जितना शक्ति बा नारी की शक्ति अपरंपार है पुरुष नारी के आगे कुछ नहीं बा कहे के नारी जो है वो सकी ढेर काम करी और ओकर में शक्ति बा है मेंटल पावर भी बा सकेला फिजिकल पावर थोड़ा कमती है पर जो मेंटल पावर है इन नारी में बा वही के नारी के देवी बैला सा जननी बैला सा हाँ कि नहीं अब नारी के आगे कुछ बैला सा चलो एक साथ सुने हैं गीत हमें नारी जन्म लेले बेटी रेजमोशस रेडियो मनोरंजन के सब हमने के लिसनर्स के नाम जो इबखत सुनता और इबखत रात के 10:10 होता मॉरिशस में और दुनिया भर में जहाँ से भी लोग हमने सुना था तो है गीत तो लोग के नाम भी नारी जन्म ले ली बेटी

0: एकदम बढ़िया भोजपुरी गीत, एकदम चकाचक गीत। और अब एगो चाची बा लाइन पे कॉल से मिलब जा। चाची ललिता ट्रियोले से। चाची ललिता नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते बेटा।
0: कैसे चाची?
1: अच्छा बेटा अच्छा।
0: गमोटा हुआ था ना?
1: हाँ
0: हाँ। चाची तो राजू के बोली मत हे जोर बा कमती कर द।
1: आतान करो आतान।
0: आले आले हम हमेशा बोल जा से जब भी टेलीफोन कर बा त राजू आ के वॉल्यूम कमती कर दे से बना नए सब सब बताई। ओके हाँ चाची।
1: राजुआ खेलती बन बेटा।
0: हाँ अच्छा कमती कर दी कि इतने ही सको सब बताई चाची।
1: राजुआ के बोली मुआ ऐसा बात नहीं। अब एक आती
0: नहीं। नहीं बोली मुआ अच्छा बात थोड़ा अच्छा रेगले करे के। बोले तो चाची आज के दिन कैसे बितल?
1: आज के दिन बड़ी ठंडा बेटा।
0: का कर बे चाची है तो लेता हूँ वही से बना।
1: हाउ जो उसने ठंडा ना।
0: बाप यहाँ तो मोटाई नहीं नहीं रही तो बुढ़िया जब सा।
1: हाँ हुआ सेंपियर मारेंगा
0: मोका सेंपियर है वाकवा सब जगह तो बड़ी ठंडा करेगा। तो त्रिको को जाकेट डली से तभी ठंडवा इतना ना अभी एमबीसी के भीतर ही से ना।
1: हाँ बेटा हाँ
0: अभी भाड़ा नहीं सकता उड़िया लगा सर। नहीं तो अच्छा जैसे भाड़ा ही ला बनपुरो जाके लुटो में हिल जाएगा फिर जाएगा गते गते
1: तो वो मोताबा जाए के चाहिए।
0: हाँ मोताबा बड़ी ठंडा मोताबा लाफलोगा बहुत शेरी होने तो आ ठंडा करेगा।
1: और ठंडा
0: चाहे गर्मा गर्म चाय कॉफी पिए के का बोलेगा।
1: हाँ हाँ हाँ
0: जाके ठीक है। अरे बोले तो चाची कौन गीत
1: सुनबा?
0: दागा देले रे सुनरुआ। गीत खातिर
1: दादिया बहिन सुदेवी ज्ञानी छोटी

0: दीदी, दादी प्रभावती, हरीश भैया, आत्माराम भैया, सुखलाल मौसी खातिन
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोहरो खातिन बेटा,
1: शुभरात्रि चाची, ऐसे इनके साथ देते रहिए। और अभी हमने की गो संगत्यावन भाई अरविंद बिसेसर जी हमने के साथ देवतन भैया जी नमस्ते है गे तोहर खातिर भौजी खातिर तो लड़का लोग खातिर सब बिसेसर परिवार के नाम। और भाई अरविंद बिसेसर जनवन भोजपुरी के एगो जन एगो महारथी हवन भोजपुरी में चोरी से भोजपुरी बतियावलन भोजपुरी में को देवरन एम जी आई से जुड़ल हवन और साथ में रेडियो पर भी स्पोर्ट्स बड़ी जोड़ी से प्रस्तुत करें चाह। और भाई अरविंद तोहर फैंस दुनिया भर में वा और मॉरिशस में ढेर मना जहाँ भी जाए रहा जैसे भाई अरविंद के नाम से ऐसा मिश्रता गाजू ना एक स्पोर्ट जो हर जन म्यूजिकल जन आइटन प्रस्तुत करें एकदम चकाचक टन टना टन टन। तो भाई अरविंद गीत खासम खास तोहर खातिर और तोहर सब परिवार के नाम। तो चलो भाई अरविंद सुनब से गीत भाग गल खसिया लबाकार रसी तुर के देखिया भाई अरविंद आई खौसी मातावा से रसी तुर के एम्बेसिया एम्बेसिया में रसी तुर के तोहर लग गया हुआ था खौसी के पकड़ के रखिया है। और हे गीत चलाओ अब से खासम खास मिस बंगारादू मिस केट मिस दीना मिस प्रतिमा मिस रोशनी सरजू रोसाई आपाया और वीरापन भाई खातिर और खासम खास भाई अरविंद बिसेसर है गीत तोहरो नाम भाग गल खसिया आहा।

रात के 10:25 हुआ था और हमने तो के साथ होता ऐसा तो लोग भी हमने के साथ हुआ था और रात के 11 बजे लिए बहुत छोटी तरह का कार्यक्रम में और एमबीसी के दो रेडियो चैनल पर चलता एगो एएम मोड पर रेडियो मॉरिशस और एगो एफएम मोड पर रेडियो मनोरंजन और वही ऐसा जब रास्ता में हमने गाड़ी खोई ऐसा तो चेहरा कुद लाखों अच्छी तरह से जाने के और नहीं चेहरा शराब पी के गाड़ी चलाए के तो कौन था बोश अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हुए पुलिस रोक ले लग और बालों सूफे कराई लग तो जेरो टॉलरेंस है तो हर पॉइंट कटाए पे हम यहाँ पॉइंट और जहाँ पर बा स्पीड लिमिट छा फॉलो करे के कहूँ पर कहाँ में किलोमीटर पर है बा कहूँ पर 100 किलोमीटर कहूँ पर 60 तो ये सब चाह ध्यान में डाले कि नहीं कि प्रेसे होते हुए तो आप ये कर ले जाते हो सीमा में और जाके धक्का वक्का मार दे एक्सीडेंट हो जा रहा तो ये खातिर ला पुलिस जो है बहुत ही सेवे आजकल जो है एक्शन ले हुआ था चाहे एक्शन भी ले के कह के तो लोग के लापरवाही के कारण तो लोग की जान भी जाला और परिवार लोग की जान भी जाला रोज की सुनी ऐसा राज्यों में टेलीविजनों में सोशल मीडिया पर कि भाई यही जगह में फलाना व्यक्ति की मौत हो गई या वो ब्लेस हो गए एक्सीडेंट हो गए तो कहे छे सीमा में इतना पैसे की तो लोग जाने रहा हमेशा से बोल रहा सर कि शराब पी बता गाड़ी नहीं चला के फिर भी थेथर लेकर शराब पी के गाड़ी चलावे ले सर अगर तू पी ले भी हवा तो को ड्राइवर ले लिया ड्राइवर थोड़ा जाके आनी जाके छोड़ दे अब पी ले वेला सर ड्राइव करे रह सर अपनों जान खतरा में जैसे दूसरों का भी जान और हमने देखे से ढेर पिएता हूँ लोग जो चले सीमा में वो लोग अपन कान में ईयरफोन डाल के चले रहें सर तो कैसे सुनाए भैया कहूँ से लुत्वा हुआ था कबू कबू जहाँ नहीं था वैसे कि वहाँ था वैसे वाला सर अब कहूँ कहूँ जहाँ पर नई दुबले हो मासिन दुबले करेगी तो वहाँ मासिन दुबले कहूँ जब लालिन जोन पर तो वहाँ जाके लुत्तु डाल ले वेला तो कैसे बनी बोला था तो सब कोई के चला अपन अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर चाहे तो सब कोई नियम से जी अपने की समाज में उनके देश में तो एक्सीडेंट जो है चीज़ है सबसे एविटे करे सब कोई अपन अपन सोफे नियम से ड्राइव करी पिएता लोग सीमा में नियम से चली कब कब देख रहे को नब्बी से आगे तो लड़का लोग बीस के पीछे से था वैसे होते हो तो जानना कितना खतरा है जहाँ क्रॉसिया बात है वहाँ सब क्रॉस पर और जहाँ होबो बात चाहे देखे कि कौन कुलिया बा लाल बात चाहे आगे तो कि जन वे बात अच्छा ना जाए कि तो होबो में दिखी रहा ढेर कोई लापरवाही करेला जन कुलिया बा तो कुलिया के नहीं फॉलो करते हो जाके धक्का का मार दे गोर हाथ टूट जा रहा था प्रॉब्लम होला अगर थोड़ा मन करता कहूँ जाए के तो आधा घंटा एक घंटा आगे निकल जाए घर से जब इस सही सलामत मंजिल तक पहुँचे अब प्रेसे वाले से सीमा में गापे करे से उड़िया से तो अपने उड़िया से दूसरों को भी उड़िया देवे से तो ये सब बात चेहरा ध्यान में रखे के तो अगर अभी जितना सुफिया लोग हमने के सुना था रात के वक्त तो सिर्फ एगो कर्जो निवेदन करते ही हम सब से एक को बात बोला तू काम करेला ड्राइव करेला रोजी रोटी कमाई खातिर तोहर घर में तोहर पत्नी तोहर लड़का लोग तोहर इंतजार कर रहा था तो निमन से ड्राइव करिए निमन से को दिला खुद सीव करिए और अपन घर सुरक्षित पहुँच जाए तो जितना सुफिया भाई बहन लोग हमने के सुना था जितना पासासे लोग अभी सुना था हमने के वान में हो ऐसा गाड़ी में हो ऐसा या कहूँ फिर कोई कहूँ जाता या कहूँ से आवा था शादी से फ्योसाई से या कोनो भी मौका से हमने के सुना तो ऐसा था गीतवा तो लोग खदेर बेत सीमा में और एक गीत गए वन गणेशन हरि रतन भाई और एक गीत चली सब सोफिया भाई बहन लोग खातिर जितना कोई रास्ता इस्तेमाल कर लोगों खातिर खासन खास गीत मनीष और चामी सिंह खातिर और पत्नी और लड़का लोग खातिर वशिष्ठ जायब न्यू ग्रोव सेवन रवि दिनू और पत्नी और लड़का और माँ बाप रवि बंगारू की ओर से पत्नी और लड़का

सब परिवार के लिए विशाल मंदिर भवन इटली से उगर घरोली और बेटी और मॉरिशस में सब परिवार के नाम ब्रह्मभाला स्वीट सेवन का तीन को बेटी और शोहर खातिर और अजय पूनम चिंताराम होवन ऑस्ट्रेलिया से मॉरिशस में कर माँ इंदिरा चिंताराम बा माता जी नमस्ते गीत चंदन और प्रिया खातिर और सलोनी और जीजाजी खातिर भी चल एक साथ सुने गीत बीत सीमा में पुलिस रोके

अभी जैसे ठंडा ठंडा करता तो मन करेगा चटकार खाना खाए के, और जब मसाला के कोनो तरकारी बनेगा तो चहला फाता या गोची सुसु गर्मा गर्म फराटा अगर मैं लीसी फ्लिया के तरकारी आलू डाल के जोली से पका देबा गर्मा गर्म फराटा पीमा के अचार क्या बात है और ढेर कोई खुशी था जब मसाला के कोनो तरकारी पके सी कोबा मसाला पकेरा या कटहर में आलू डाल के मसाला में या कोनो भी मसाला के तरकारी पकेरा तो अगर मैं फराटा जो ना क्या बात है फराटा गोची या नान अब तोरा पाले से कहता फराटा पकाए कि आज तो मशीन सब कहती मशीन बा गोची में कभी बेचाला अभी देखा था एक दिन सोशल मीडिया पर भारत में एगो मशीन बनल बा गोची फराटा पकाए के ओकर में एगो कोना में सब ओकर पानी डाले एगो कोना में तेल एगो कोना में आटा और अब आया कुआं से चलेला ये सब डाल देबा ताकि दबाइबा तो 15 मिनट में सकेला 10 या 20 को फराटा बन जाए यानी कि वो लोग की भाषा में चपाती बोई रहा सर तारा इला पागी हुआ बहुत जल्द मॉरिशस आए और हम नहीं जाने से कि ढेर कोई इला पागी हुआ कि नहीं इतना महंगा नहीं बैगो 15-20 हज़ार ले इला पागी हुआ हुई देखा थे सोशल मीडिया पर जो टाइप करिए गूगल पर या कोनो भी साइट पर और टाइप करिए इंडियन गोची मेकर द न्यू वन 2026 एडिशन इला पागी हुआ एगो माइक्रोवेव लिखा हुआ और कुरों के ला पा रही है तो कर मेरे को प्लस बाकर पानी डाले के आटा डाले के तेल डाले के और बटन बा तो बटनों का इंस्ट्रक्शन बा गोली वाली बा में देखिए बटनों दबाई बा तो आराम से डाल दिला कर तेल आटा पानी बैठ के ताक मशीन वहाँ 15 मिनट में 10-20 को चपाती पका के थोड़ा दे दे गर्मा गर्म क्या बात है तो बेशक जब अबरिया फाता पकई बा मसाला का तकारी तो हमने के याद करिए हमने हमरो लगे जब पके रहा मसाला के कोनो तकारी तो फाता पकाई रहा सा ओची पकाई रहा सा हाँ कब कब वो ठंडा करे रहा नेमन करे रहा फाता पके तो फाता किन क्या नहीं रहा सा घर में सब कोई परिवार के साथ खाई रहा सा क्या बात है चलो इसी में समझा गरम गरम दाल कच्चू की कहानी संतोष महादेव की तो आ गए ले हवन और गीत चली गिरीश हल्लोर के नाम हेलो गिरीश भैया गीत और खातिर कुणाल हिरीलाल पूर्णिमा फकीरा किशोर खेमिया और संजय हरिचंद खातिर भी यूनिवर्सिटी मॉरिशस के फैकल्टी सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज की बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच पीएचडी फ्रेंच और एमजीआई मुका के हिंदी और संस्कृत विभाग भोजपुरी विभाग जो है वहाँ पर ही जो बीएमए हिंदी संस्कृत भोजपुरी की पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्रोफेसर लोग बा और लोगों खातिर एक गीत चली सेंट थॉमस कॉलेज के सब टीचिंग नॉन टीचिंग सब और स्टूडेंट्स के नाम है गीत चली लाफलोगा के विशाल विशेषर के नाम और पत्नी और बेटा शालिनी हिरू है गीत तोहर दुगो बेटी तोहर घरोला विशाल तोहर भाई कृष्णा सब हिरू परिवार के नाम तो चलो एक साथ सुना है गीत गरम गरम दाल कच्चू आ हा हा गरम गरम दाल कच्चू रही पीमा के अचार और गर्मा गर्म पूरी तो हम तो है ये खाप खाली

इंसान सकेला सब कुछ भूल जाए पर बचपन के दिन कब नहीं सकेला भुला हमने के बचपन के साथ हमने की धे मना याद जुड़ल बा बचपन में जुन है ढेर कोई कनेक्ट खेलता है गुड्डी उड़ावता है लाखू उड़ावता है चौकड़ी लोग लमाखेर खेलता है लाखों सोते उतरन सा तो धे मना खेल रहा आगे के जमाना में है सब खेल आजकल नहीं लोग खेला और हमने के बचपन तो ऐसे ही बीतल बा हर प्रकार के खेल रहल और गुड्डा गुड्डी के खेल कुकाशेत माये ना ये सब खेल रहल पर आजकल ये सब खेल नहीं रोके लगा कि आजकल लड़का लोग इंडो गेम जस्ती खुशी ले रहे हैं जेनरेशन जेन जी अब जो लड़का लोग उनके जेनरेशन अल्फा कहला तो चला अभी सुनब जा अजब गजब के लोग भाई दुनिया में ये गीत चलावते ऐसा जिमी दुखिया खतीर होरीलाल दिनू श्याम मंगल राजमना सुदेश जसवा लोंग चिबुक राजा स्टीव संजीव संजय और प्रवीण बुधन खतीर और प्रवीण भैरव खतीर और है गीत चली प्रवीण बुधन के नाम आप भी आदेश होंगी है गीत चली प्रवीण बुधन खतीर और माता जी पिताजी और सब परिवार के नाम और कनाडा में उनका परिवार बाकी वेज पोस्ट में उनका परिवार बा और जहाँ से भी तू हमने की सुनाते हुआ ढेर कोई हमने की देखो देते हैं ते पर सुनाता ढेर कोई MBCR प्ले पर मोबाइल फ़ोन पर ढेर कोई राज्यो में ढेर कोई इंटरनेट पर www.mbcradio.tv पर सुनाता और हमकी आवाज़ दुनिया भर में पहुँचता है कनाडा इटली ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया से शेल मारागास्को जहाँ से भी तो लोग हमने की सुनाते हुआ सब कोई कहते रहे गीत इस दुनिया में अजब गजब के लोग बा कोनो कोनो लोग बड़ा ही अच्छा हुआ सा पर कोनो कोनो ढेर मोवे लोग भी बा पर तू मोवे लोगों की भुला जिया तू अच्छा अच्छा लोगों से दोस्ती करिया और ज़िंदगी में आगे बढ़िया

किशोर कुमार अमेसर वंदना नमजी थोपलान के गावल गीत पानी की पानी पानी के संगे ही फौज भीतर का प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। कुछ मिनट में रात के 11 बज जाए, 11 बजे सुन बजा सुनहरे पर प्रोग्राम नीतू शाह के साथ और रात के 12 बजे से कार फजर के 5 बजे नॉनस्टॉप फिल्मी तराने सुन बजा। रात के 9 बजे से अभी देम के साथ रचा टिकटॉक पर हमने के देख ला रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर सुन ला। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ों के फोन कॉल्स और SMS करते शुक्रिया। हमने की तो लोग की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे यही चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का। कल रात तक हमने की इजाज़त दा जी प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्यारे प्यारे हमारे जितने भी श्रोता इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं, स्वीकार करें नितुषा का करजोर प्रणाम। सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन है। हमेशा की तरह आज भी सुनहरी यादों में आपको खोए ले जाने आए हैं, और आज जिन कलाकार के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और जबरदस्त गाने चलाएंगे, वो हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के जो कपूर परिवार के बेटे हैं। कौन सा बेटा, ये गाना सुनिए, पता चल जाएगा।

तो आज का ये सुनहरे पल कार्यक्रम आपके नाम है शशि कपूर। जी हाँ, एक शांत, सभ्य और कलात्मक सितारे की कहानी। शशि कपूर का नाम आते ही मन में एक ऐसे कलाकार की तस्वीर उभर कर आती है श्रोताओं, जो अपने नर्म मुस्कान, गहरी आँखों और बेहद स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका पूरा नाम बलबीर राज कपूर था और उनका जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ। वे कपूर परिवार के सबसे छोटे बेटे थे और पृथ्वीराज कपूर जैसे महान रंगमंच कलाकार के पुत्र होने के कारण कला उनके रगों में बसी हुई थी।

शशि कपूर ने अपना कलाकार सफर बहुत ही छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। बचपन में वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर के नाटकों में काम करते थे। यहीं से उन्होंने अभिनय की बुनियादी समझ, डिसिप्लिन और कला के प्रति समर्पण सीखा। रंगमंच ने उन्हें एक मजबूत कलाकार बनाया जो बाद में पर्दे पर भी साफ नजर आया।

वैसे शशि कपूर ने फिल्मी दुनिया में पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन एक लीडिंग हीरो के तौर पर उनकी पहली बड़ी फिल्म थी 1961 की धर्मपुत्र। इस फिल्म में उनके गंभीर और प्रभावशाली अभिनय को बहुत ही सराहा गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 60, 70 और 80 के दशक में लगातार सफलता हासिल की।

शशि कपूर ने अपने करियर में लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार और लोकप्रिय फिल्म रही जब जब फूल खिले, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, त्रिशूल, नमक हलाल, चोर पुलिस, फकीरा, जुनून, कलयुग, चोर मचाए शोर। उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में भी दिल जीते और सीरियस, नेगेटिव या फिर कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका अभिनय कभी भी बनावटी नहीं लगता था। वे कम शब्दों में भी गहरी भावना व्यक्त कर दे।

70 के दशक में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। दीवार, त्रिशूल, कभी कभी जैसे फिल्मों में दोनों के बीच का कंट्रास्ट, अमिताभ बच्चन का तीखा तेवर और शशि कपूर का शांत सभ्य व्यक्तित्व पर्दे पर कमाल लगता था। शशि कपूर की एक्टिंग की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस। वे डायलॉग से ज्यादा आंखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से कहानी कह देते थे। उनकी आवाज में मधुरता थी और उनका व्यवहार पर्दे पर बहुत ही सच्चा लगता था। वे हर तरह के किरदार को ईमानदारी से निभाते थे।

श्रोताओं, शशि कपूर सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक साहसिक प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल के साथ मिलकर फिल्म वलस नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस बैनर के तहत उन्होंने आर्ट और पैरेलल सिनेमा को बढ़ावा दिया। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्शन फिल्म्स रही जुनून, 36 चौरिंगी लेन, कलयुग और उत्सव। इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा का नाम रोशन किया। व्यक्तिगत तौर पर उनकी जिंदगी देखें तो शशि कपूर ने, जैसे कि हमने कहा, ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से विवाह किया। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि कला का भी था। जेनिफर के निधन के बाद शशि कपूर का जीवन काफी बदल गया और वे धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से भी दूर हो गए। उनके तीन बच्चे कुणाल, करण और संजना कपूर भी कला से जुड़े रहे।

अपने करियर के दौरान शशि कपूर को उनके योगदान के लिए बड़े सम्मान मिले, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये पुरस्कार उनकी कला, समर्पण और सिनेमा के प्रति उनके प्यार का प्रमाण

हैं। उनका निधन 4 दिसंबर 2017 को हुआ, लेकिन वे आज भी अपनी फिल्मों, अपने शांत अभिनय और कलात्मक विरासत के जरिए अमर हैं। वे सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक सुशील, संवेदनशील और समर्पित कलाकार रहे। शशि कपूर हमेशा याद किए जाएंगे एक मुस्कुराते हुए चेहरे, गहरे किरदार और सच्ची कला के रूप में। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: Legacy Radio, 24 hours a day.
1: अस्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।